किसने कहा, अरे किसने कहा प्लांट्स ट्रीज जो है ना वो फील नहीं कर सकते। एनीवेज मैं आज अनुपमा सी मॉर्निंग शो पर आपके साथ। अच्छा एक तरफ तो दुनिया में रोबोट्स की बातें चल रही हैं, एक तरफ दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है, लेकिन एक तीसरी तरफ भी है जिसमें नेचर का ध्यान रखे, नेचर को और कैसे आगे बढ़ाएं, नेचर के अंदर कितनी ताकत है, आप इसके सामने चाहे कुछ भी बना दे मशीनरी आप जीत नहीं सकते, ऐसे कॉन्वर्सेशन भी चल रहे हैं। ऑन दिस नोट मैं आपको बताना चाहूंगी, रिसेंटली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है कि जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स ये रेन का साउंड महसूस कर सकते हैं, उस हिसाब से रिएक्ट कर सकते हैं। रियली हाँ, प्लांट्स साउंड सुन सकते हैं, वो भी बारिश का। वैसे सिंगापुर में रहते रहते बारिश की आवाज सुनने को तो हमारे कान भी तरस जाते हैं। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
2: क्या लगता है पिछले 10 साल के इतिहास में आपने सबसे बेहतरीन काम कौन सा किया? हाँ, दिमाग पर जोर डालेंगे तो शायद याद भी आ जाए, या फिर बहुत ज्यादा देर जोर डालने के बाद भी याद ना आए। इसीलिए बोलती हूँ एक डायरी मेंटेन करके रखा करो आप। हाँ, आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। चलो ठीक है, डायरी ना सही, एक एक्सेल मेंटेन कर लिया करो, नोट पैड मेंटेन कर लिया करो, ऑडियो चैट बॉक्स मेंटेन कर लिया करो, जैसा भी हो कुछ तो कर लिया करो ताकि आपको अपनी उपलब्धियां याद रहे। एनीवेज, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी, पिछले 10 साल में अगर अक्रॉस द ग्लोब ये देखा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट या एक नया बदलाव क्या निकल कर आया है, तो वो आया है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके थ्रू हर सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजी वाइज। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो लोग उस टेक्नोलॉजी को AI इनेबल टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, वक्त बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, और आप भी थोड़ा बदलिए और आने वाले गाने इंजॉय कीजिए। मस्ती मॉर्निंग शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
1: Not all music is loud. Some songs just sneak in. Makes you smile, hum along, and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान,
2: जोश में रहो।
1: बिल्कुल, बात जब आती है स्किल्स की तो सिंगापुर कभी भी पीछे नहीं रहता, राइट? एनीवेज, अगर आप सोच रहे होंगे कि सिंगापुर पीछे नहीं रहना चाहता है तो उसके लिए पब्लिक स्पीकिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? अगर आपकी एज 14 इयर्स या उससे ज़्यादा है और आप पब्लिक स्पीकिंग में आगे बढ़ते हुए हमारी तरह, मतलब हम आरजेस की तरह, आप भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कॉन्टेंट क्रिएशन से लेकर पॉडकास्टिंग से लेकर इंटरव्यूइंग से लेकर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स तक, आपको हर एक चीज बताई जाएगी, सिखाई जाएगी थॉरली। लिमिटेड आवर्स का प्रोग्राम रहेगा मस्ती मीडिया एकेडमी में, आप एक स्पेशल ट्रेनिंग ले सकते हैं। डेफिनेटली ये जो है अपना हाइब्रिड मोड पे होगा, मतलब ऑनलाइन लर्निंग भी रहेगी और स्टूडियो विजिट भी रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो ये स्किल आपकी खाली नहीं जाने वाली है, हाँ जी। तो क्विकली एनरोल कीजिए info@radiomasti.com.sg पे। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें। समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में
2: सोचो सोचो सोचो वो कौन से एक्टर्स हैं जो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। अब ऐसे ढूंढने जाओगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन वैसे ढूंढने जाओगे तो बहुत कुछ पता चलेगा। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ बताना चाहूंगी, बहुत सारे एक्टर्स जो है ना वो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत कुछ बताते हैं। मतलब स्पेशली उन्होंने कहाँ पर अपने लिए अपार्टमेंट बुक करवा लिया है, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज है, वो इस एरिया में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऑलमोस्ट ये जो बातें होती है ना वो बिकी हुई होती हैं, रियल इस्टेट एजेंट्स जो है ना वो उनसे बुलवाते हैं और कुछ वक्त के लिए उन्हें वो फ्लैट दे भी देते हैं ताकि उसके आस पास सारे फ्लैट्स बिकने लगे, सेलिब्रिटी वाइब उससे आने लगे और उसके बाद उनको वो अमाउंट हैंड ओवर कर दिया जाए जो उनके मार्केटिंग बजट के लिए तय किया गया था। मतलब ये चल रहा है मार्केट में, तो आप किसी सेलेब्स की बातों में मत आ जाना। हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

इमेजिन आप इंडिया पहुंचे हैं और सबसे पहले आपने कदम रखा है कैपिटल सिटी दिल्ली में और आपको वहां पर सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक नजर आए, इवन शोर शराबी नजर ना आए, पॉल्यूशन लेवल्स कम नजर आए, तो आप बिलीव करेंगे? नहीं, आपको लगेगा कोई फिल्मी सीन हो रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ना ना ना ना ना ना ना, ऐसा कैसे हो सकता है? हम जैसा अपना देश छोड़ के गए थे, इतना कैसे बदल गया? इतना लंबा तो गैप भी नहीं हुआ। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे अनुप्रा को बताना चाहेगी, आप ऐसा फील कर सकते हैं आने वाले 2-2.5-3 सालों में, बिकॉज बाय दिस ईयर 30% बदलाव आ चुका है। जितनी भी कार्स कैपिटल सिटी में बेची गई हैं, उनमें 30% जो व्हीकल्स हैं वो ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। सो बाय द टाइम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के भी आप कह सकते हैं, उनकी वजह से भी और भी बहुत सारी वजह है कि लोग ईवी पर स्विच कर रहे हैं, तो वो दिन भी दूर नहीं कि आप इंडिया में जाके पॉल्यूशन लेवल्स के बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करेंगे। आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर,
3: जैसे हमारे यहाँ कह दिया जाता है ना कि ज्यादा उड़ो मत, बड़े पर लग गए तुम्हारे, फिल्मी देख के जो बर्बाद हो रहे हो ना तुम लोग, सब जानते हैं हम लोग। ऐसे ऐसे टॉन्ट मार दिए जाते हैं ना, तो मैं तो चाहती हूँ ऐसे टॉन्ट्स जो है ना वो रोबोट्स को भी मारे जाए। क्यों? क्योंकि बाय द टाइम धीरे धीरे से रोबोट्स इतने ज़्यादा एफर्टलेसली काम कर रहे हैं या उन्हें उतारा जा रहा है, तो डांट वाट ये भी खाएं हमारी मम्मियों से तो सही रहेगा। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे पर आपके साथ। अच्छा, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, स्विट्जरलैंड में करीबन 100 स्पेशीज जो हैं बर्ड्स की आइडेंटिफाई करके उनकी लाइफस्टाइल को देखते हुए, उनकी क्वालिटीज को देखते हुए रोबोट्स तैयार किए गए हैं। राइट, बिल्कुल पंछियों जैसे रोबो, एंड उनका वजन भी 300 ग्राम है लिटरली। मतलब बर्ड्स इंस्पायर्ड रोबो हैं जो कि उड़ भी सकते हैं, तैर भी सकते हैं। राइट, फ्लाई एंड स्विम दोनों क्वालिटी जो है ना वो उन रोबोट के अंदर रखी गई है। तो स्विट्जरलैंड के ये रोबो सोशल मीडिया पर आए हाय अपने परिंदे जैसे पर फैला रहे थे। सो डेफिनेटली इट्स अ गुड इनोवेशन जो अपकमिंग डेज में आपको दिखाई दे सकती है। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तुम्हें बता रही हूँ।
1: पर क्यों?
0: क्योंकि ये देखो #you #ouch #her और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
1: उसे कूदने से पहले उसे बता के तो जा।

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
0: जोश में रहो।
2: दुनिया का एक बहुत बड़ा सवाल थिएटर्स की स्क्रीन पर पूछा गया था, क्या कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये सवाल मीम की तरह निकल कर आ गया था और मूवी का दी एंड हो गया था। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आरजे नुपुर आपके साथ है, और होता है ना, जिस पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वही विश्वासघाती निकल जाए, तो मतलब वही जो है ना आपसे एकदम फेस टू फेस करके सारी चीजें नेगेटिव बोल जाए तो बुरा लगता है, डेफिनेटली बुरा लगता है। तो जिस तरह से बाहुबली मूवी में हमें एक एंड सस्पेंस भरा दिखाया गया था, ठीक उसी तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल की दिवाली पे जो रामायण मूवी आ रही है उसमें भी एक क्लाइमेक्स होगा, और वो क्लाइमेक्स एक सवाल के साथ छोड़ा जाएगा, ताकि वो सवाल आप कंटिन्यूएशन में देख पाए कब, अगले साल की दिवाली पर। राइट, तो इस मूवी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेवली बजट है, लेट्स सी कहां तक जाती है रामायण मूवी। मैं आरजे नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, मैं पहुंच रही हूँ आज के सवाल के जवाब की तरफ, जो कि मैंने आपसे पूछा था थोड़ी देर पहले।
3: झूठे मूठे पत्तियां बनाए कैसे।

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल

0: सुन टकाटक, ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
1: क्या बात है। आज के जवाब भर भर के मेरे पास आए हैं मेरी जान। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुरा आपके साथ मस्ती मॉर्निंग शो आपने ट्यून इन किया है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको याद दिलाया था कि आज द सोनू सूद, हाँ जी, जिन्होंने देश के बच्चे बच्चे को मदद करने का वादा किया है, राइट। सोनू सूद का है बर्थडे और डेफिनेटली सोनू सूद जो है अपने टाइम पर मिस्टर इंडिया जैसे कॉन्टेस्ट के पार्टिसिपेंट रहे हैं और भी इनके बड़े सारे प्रोजेक्ट्स हमें पसंद आए हैं। बट इनका एक डायलॉग मैंने प्ले किया था जो आपको बताना था कौन सी मूवी से है, और डायलॉग था,
2: बहुत भरोसा है अपने आप पर,
3: भरोसा भी है, हिम्मत भी, और ताकत भी, और पागलपन हद से ज्यादा,
1: राइट। मूवी का नाम था दबंग। बाय द वे, दबंग मूवी करने की कुछ खास इच्छा नहीं थी सोनू सूद की, बट उन्हें थोड़ा सा रीराइटिंग के साथ अपने डायलॉग्स को बहुत ज्यादा नेगेटिव ना करते हुए मूवी करनी पड़ी थी। और इस मूवी का दूसरा पार्ट जब दोबारा से सोनू सूद को ऑफर किया गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हाँ जी, दैट्स वाई नेगेटिव किरदार में प्रकाश राज को लिया गया था, बट हाँ, सोनू सूद अपने रोल्स को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए थे तब तक कि मुझे इतना नेगेटिव क्रिमिनल तो नहीं बनना है यार। ऑन दिस नोट, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू सोनू सूद। फिलहाल मी आरजे नुपुर साइनिंग ऑफ। आप ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहिए, सही जवाब देते रहिए और बने रहिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वीर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
3: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, Masti 90s mixtape with aapki 90s wali antra, Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Masti 24/7 Live.

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh mein raho.
3: Your Musti Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: टोटल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा। थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: राहुल, अंजलि, चीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
1: हेलो हेलो, वेलकम नमस्ते रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा यहाँ पर आपके साथ। बिल्कुल दोस्ती दिवस मनाने, क्या ही टाइमिंग, ओ माय गॉड। एक तो मस्ती 90s मिक्स टेप हमारा ये शो, उसके ऊपर से आज है फ्रेंडशिप डे, दैट इज सो वेरी नाइस। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दैट रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मस्ती 90s मिक्स टेप, दिस पर्टिकुलर शो हैज अ स्पेशल एंड खास प्लेस हर किसी जो इस वक्त ट्यून इन करता है सिर्फ इस शो के लिए। हमारा दोस्ती का रिश्ता बहुत ही ज्यादा खास है। हम उस टाइम की दोस्ती की बात कर रहे हैं जब हमें ये बताया गया कि एक लड़का और एक लड़की सुमन कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। बट उसी टाइम पे हमें ये भी शाहरुख खान ने जो है वो सिखाया दैट प्यार प्यार दोस्ती है। Yes, Miss Briganza. हमने कितना सब कुछ देखा है, ना ही सिर्फ अपनी 90s की दोस्तियों को लेकर, which we are still at this point of time, we cherish those moments which we have lived through, but also at the same time, we have understood the meaning of it, all thanks to 90s का Indian cinema as well. So well, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा show जो है, it is going to be nostalgia. देखिए हमारा कुछ ऐसा है 90s का जो ये show है, उसका स्कोप बहुत ही वाइड है, ठीक है। यस, इट्स फ्रेंडशिप डे एंड आप सभी को एंड यू बिकॉज आप सभी मेरे बहुत खास दोस्त हो, सो यस आई विल टेक यू अलोंग विद मी 90s की उस दुनिया में। अलग अलग चीजें याद करेंगे, ऐसी ऐसी बातें याद करेंगे, साथ में 90s के गाने सुनेंगे। मुझे लगता है ये 3 घंटे वो सबसे हसीन 3 घंटे होते हैं। आप मतलब 90s वाले दोस्तों को बैठा दो और ये 3 घंटे वी कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट दिस। आप बिलीव करोगे ये शो करते हुए मुझे कितना टाइम हो गया है। आई डोंट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ एपिसोड्स आई हैव डन ऑफ दिस पर्टिकुलर शो कॉल्ड मस्ती 90s मिक्स टेप एंड आई ट्रूली ट्रूली ट्रूली चेरिश इट लाइक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड आई नो दैट मेरे जो ये 90s वाले दोस्त हैं जो ट्यून इन करते हैं या और जो नहीं भी करते हैं उनके लिए भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। एंड यस, लेट द मस्ती ऑफ 90s बिगिन। गाने सुनते हैं, अच्छे अच्छे वापस आते हैं और अपनी यादों का पिटारा खोलते हैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ 90s वाली यात्रा आपके साथ।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
1: वो रिवाइंड का बटन काश आज भी होता, तो रिवाइंड का बटन प्रेस करते ही हम लोग 90s के उस दौर पे बिल्कुल पहुंच जाते हैं। वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, आप सुन रहे हैं मस्ती 90s मिक्स डे। भाई 90s के बच्चों का एक लाइफ लेसन जो स्कूल ने नहीं, वीडियो कैसेट और ऑडियो कैसेट्स की लाइब्रेरी ने सिखाया था, रिवाइंड करके देना। एंड स्पेशली अगर मैं वीडियो कैसेट्स की बात करूँ तो अगर घर में VCR था या वीकेंड पर वीडियो कैसेट पर आती थी, तो फिल्म खत्म होते ही सबसे पहला काम होता था कैसेट को रिवाइंड करना, क्योंकि अगर बिना रिवाइंड किए वापस दी तो हमारे जो वीडियो लाइब्रेरी वाले भैया जी हैं वो एक्स्ट्रा सुना देते थे कि या फिर अगला कस्टमर सोचता था कि अरे यार शुरू से देखना है। मतलब वो जो एक हमारी वो था ना कि अगर कैसेट आई है तो अगर बीच से फिल्म शुरू हुई है देन यू हैव टू वेट फॉर अ लिटिल बिट मोर, ओके, कि पूरी रिवाइंड होगी उसके बाद हम बैठ के देख पाएंगे। हमारा एकदम पीक पे होता था कि अरे आज तो मजे ही आ जाएंगे। एंड रिवाइंड होते वक्त जो मशीन से आवाज आती थी वो भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन देती थी। स्क्रीन पर बस ब्लू बैकग्राउंड, काउंटर के पीछे भाग रहा होता था एंड हम पेशेंटली वेट करते थे। आजकल के बच्चे शायद ये समझ ना पाए कि मूवी देखने से पहले भी 2 मिनट का पेशेंस लगता था। और इससे जुड़ी एक और बात बताती हूँ, जब 90s में फिल्म्स VHS पर रिलीज होती थी ना, तो कई बार उनके कैसेट कवर्स थिएटर पोस्टर्स से बिल्कुल अलग होते थे। वीडियो कंपनीज स्पेशली नए कवर डिजाइन बनवाती थी ताकि जब वो लाइब्रेरी की शेल्फ पर रखे हो तो दूर से देखकर ही बोले लोग कि ये वाली घर ले चलते हैं। मतलब उस जमाने का वो थंबनेल हुआ करता था, कैसेट का कवर होता था, और वीडियो लाइब्रेरी जाना भी एक इवेंट के बराबर होता था। रैक्स के बीच में खड़े होकर हर कैसेट को उलट पलट कर देखना, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, और अगर जिस फिल्म के लिए गए थे वो ऑलरेडी रेंट पे चली गई है तो मूड भी साथ में चला जाता था ऑफ में। नेटफ्लिक्स पूछता है आर यू स्टिल वॉचिंग, 90s की वीडियो लाइब्रेरी पूछती थी बेटा रिवाइंड करके लाए हो कि नहीं। सच कहूं फिल्म सिर्फ स्क्रीन पे नहीं चलती थी, उसकी एक्साइटमेंट तो शुरू हुई मतलब वैसे ही हो जाती थी जब हाथ में वो प्लास्टिक वाली VHS कैसेट आ जाती थी। नहीं, मस्ती 90s मिक्स टेप सुनते रहिए, ये यादों का बेटा रहा तो अभी खुला है और बहुत मजा आने वाला है। स्टे ट्यून्ड।

0: पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: हम आपके है कौन? आई मिस 90s की मूवीज फॉर दिस अनदर रीजन। यू नो वॉट, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। देखो मैं बताने आपको कुछ और वाली थी, मैं अचानक से डिस्ट्रैक्ट हो गई बिकॉज आई सैंग दैट सॉन्ग। ओके, यू नो इट इज, वी आर सो वेरी 90s, इट इज बिकॉज वी आर सो वेरी 90s कि हम जैसे ही हम आपके है कौन गाते हैं तो अचानक से स्क्रीन जो है ना वो हल्की सी डार्क सी हो जाती है और वहां पर आ जाते हैं सलमान खान का एक क्लोजअप शॉट और उसी के साथ साथ जो है स्टारिंग और वीडियोग्राफर कैमरामैन इनके जो है सारे टाइटल्स आने लगते हैं एंड वो रेड और येलो वाले एक फॉन्ट में जो है वो क्लियरली वहां पे हम आपके है कौन एकदम ऐसे स्वाइप करते हुए आता है और स्वाइप आउट हो जाता है एंड एवरीथिंग इट इज सो फ्रेश। एंड अब आप मुझे आज की डेट में एक ऐसी मूवी बता दो जिसका इंट्रो यानी कि ओपनिंग जो है आपको इस कदर याद है जिस तरह से मैंने अभी डिस्क्राइब किया है। आई मीन नॉट ओनली दिस, आई कैन टेल यू अनदर सलमान खान मूवी, मैंने प्यार किया है ना, आते जाते हंसते गाते, दिस वॉज द सॉन्ग जो कि बैकग्राउंड में चलता है एंड देर आर टू डांसर्स ओवर देयर जो कि ब्लैक शैडो की तरह पूरा डांस कर रहे होते, इट्स ब्यूटिफुल, लाइक इट्स अ मोमेंट एंड आई मिस दीज मोमेंट्स व्हेन देयर यूज टू बी एन इंट्रोडक्शन एंड अ सॉन्ग एंड अ फील एंड अ ऑरा लाइक दिस इवन बिफोर मूवीज यहाँ पे शुरू होती हो। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ 90s कि ये सारी चीजें उस वक्त हुआ करती थी। आजकल ना किसी के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, कोई OSTs लाइक ओरिजिनल साउंडट्रैक्स के लिए कोई वेट नहीं करता है एंड ऑल दोस थिंग्स डजंट हैपन नाउडेज, बट आई क्रेव फॉर इट डेफिनेटली बिकॉज वी हैव सीन दिस राइट। जब ये सब देखकर जो क्रेव करना है वो नहीं मिलता ना तो फिर लगता है कि चलो ठीक है यार। सी वक्त के साथ हर कोई इवॉल्व करता है, वी एंड वी आई थिंक 90s kids have evolved like crazy. आप भाई दुनिया में 90s के किड को आज के डेट में दुनिया के किसी भी कोने में डाल दो, that person is the most amazing survivor of the whole planet earth. Because जितना transition and evolvement एक 90s kid ने देखा है और उसको सर्वाइव किया है, उसको सीखा है, अडाप्ट किया है, एडजस्ट किया है एंड अभी भी करता हुआ जा रहा है, व्हाट हैव वी नॉट सीन? सो वेल या वी आर द सर्वाइवर्स, वी आर द ट्रू सर्वाइवर्स ऑफ ऑल टाइम, या वेरी वेरी प्राउड। मस्ती 90s मिक्स टेप बिल्कुल सुनते रहिए एंड आई विल बी राइट बैक एंड यस हैप्पी फ्रेंडशिप डे।
2: Nine, eight, seven.

0: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: मुसल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: I think not only खुशबूज and not only the बातें and not only the गाने of 90s जो हमें 90s की तरफ खींचे हुए हम चले जाते हैं, it is the smell and the आवाज of the 90s as well। आपको नहीं लगता? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s mixtape, चाहे वो इंटरनेट से जो है राउटर की वो ची वाली वो कनेक्ट होने वाली आवाज हो। आपको याद है कैसे हमारा फोन, अगर हम अगर कंप्यूटर पे बैठे हो और इंटरनेट पे डायल अप सर्वर से हमने डायल कर लिया हो एंड अगर कहीं से कॉल आ रहा हो तो वो आपका टट करके एक साउंड आता था, विच मीन्स एंड विच दैट्स हाउ वी गॉट टू नो कि आपका फोन बजने वाला है। तो साउंड पहले आती थी, फोन बाद में बजता था। डू यू रिमेम्बर दैट? दैट इज सो इनसेन राइट? बट देर इज सो मच मोर भाई। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, इट इज नॉट ओनली हमारा जो है लैंडलाइन फोन का आवाज, बट एक और घंटी की आवाज मैं यहाँ पे बोल रही हूँ जहाँ पे पूरा मोहल्ला समझ जाता था कि कुल्फी वाला आ गया है। डू यू रिमेम्बर दैट? स्टील वाली, उसमें ठंडे ठंडे पानी में डालकर और वो सारी स्टिक के साथ और लाल कलर के कपड़ा उसके ऊपर हमेशा पड़ा होता था। आज भी कानपुर जाती हूँ ना तो गलियों में ये वाले जो है भैया जी आते ही आते हैं। इट या आई थिंक वक्त वहां पे थोड़ा सा कहीं तो रुका हुआ है। बट वेल, आज फोन का वाइब्रेशन सुनते ही हम स्क्रीन देखते हैं। 90s में एक छोटी सी घंटी सुनते ही हम सीधा गेट की तरफ भागते थे और सिर्फ कुल्फी वाले ही नहीं, हर हॉकर जो है जो भी भैया जी होते थे उनकी एक अपनी पहचान हुआ करती थी। चुस्की वाला, मूंगफली वाले भैया, बलून वाले भैया, सबकी आवाजें अलग अलग थी। सब्जी वाले भैया वो चीख चीख के बोलते थे, उनकी मार्केटिंग का यही था कि चिल्ला चिल्ला के जो है वो मार्केट करो। सो उस वक्त गूगल मैप्स नहीं था लेकिन उनकी घंटी की लोकेशन हम 100 मीटर दूर से ही आइडेंटिफाई कर लिया करते थे। फिर उनके साथ एक अलग ही दोस्ती का रिश्ता जो है हमसे नॉट ओनली बच्चों से, आई थिंक घर की लेडीज से तो हो ही जाता था। एंड देन यू नो कुल्फी वाले भैया के पास जाना है या आइसक्रीम वाले क्वालिटी वॉल्स वाले भैया के पास जाना है तो मम्मी प्लीज यार पैसे दे दो, पैसे दे दो। एंड क्लासिक जवाब आता था, अरे अभी तो खाया था। या उनका हमेशा ही ये था, अभी तो खाया था, और मेरा हमेशा यही था, मैंने तो कभी भी नहीं खाया। लेकिन हम भी कम नहीं थे, 2 मिनट की नेगोशिएशन फाइनली हाथ में आ जाती थी वो ऑरेंज वाली आइस कैंडी या मलाई कुल्फी या फिर वो रंगीन काला खट्टा वाली चुस्की, जिसकी वजह से जो है वो जीभ लाल नीली पीली हरी सब कुछ हो जाया करती थी। और उस वक्त फ्लेवर से ज़्यादा एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। धूप कितनी भी हो, गर्मी कितनी भी हो, एक कुल्फी गई बस दिन बन गया। और सबसे खास बात, वो साउंड सिर्फ चीजें बेचने के लिए नहीं होते थे, वो बचपन को घर के बाहर बुलाने आते थे। आज नोटिफिकेशंस हजार है लेकिन उनमें वो एक्साइटमेंट नहीं। 90s में एक छोटी सी घंटी और पूरा बचपन एक्टिवेट हो जाता था। सच बताइए, आज अगर कहीं पर वो पुरानी कुल्फी वाले भैया की घंटी सुनाई दे जाए तो अंदर से वो आपका 10 साल वाला बच्चा जो है ना गेट की तरफ भागना चाहेगा कि नहीं चाहेगा। फिलहाल तो मुझे पता है, मैं जब ऐसी बातें करती हूँ ना तो आप भाग के मुझे गले जरूर लगाना चाहोगे कि यार क्या ही याद ताजा कर दी, मजा ही आ गया। आई लव इट। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, यही तो है हमारी दोस्ती, 90s वाली दोस्ती।

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें

पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पर लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। ये संडे की फिल्म में हमारे हमेशा से सबसे बड़ा विलन पता है कौन होता था? मैं बताती हूँ 90s का विलन हमारी जिंदगी में कौन था। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतर आपके साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप और उसी के साथ साथ ये जो है बत्ती चली गई ये था करंट

जब पावर चला जाता था ना, ओ हो ना ना अमरीश पुरी नहीं, गुलशन ग्रोवर नहीं, ना ही शक्ति कपूर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड थे हमारे जान के दुश्मन। याद कीजिए वो संडे, पूरा घर रेडी, लंच जल्दी फिनिश हो गया, ठीक है, घर में जो है पापा ने न्यूज़पेपर फोल्ड करके वो भी बैठ गए, मम्मी चाय बना रही है, हम कुशन लेकर मतलब टीवी के बिल्कुल सामने, एकदम सब कुछ सेटल हो गया। और जैसे ही हीरो एंट्री लेने वाला हो, लाइट ही चली गई। उस एक सेकंड में ऐसा मूड ऑफ होता था ना, और सबसे पहले यार एक बार बाहर जाके चेक करना पड़ोस में भी गई है कि नहीं। सो फिर कोई बालकनी में, कोई गेट पर, कोई छत से जो है वो झांक रहा है, अगर सामने वाले घर पे भी अंधेरा है तो लगता था कि हाँ सुकून है थोड़ा, कि अच्छा सिर्फ हमारे यहाँ नहीं गई है, और अगर किसी के घर जनरेटर चल गया बस उस घर के बच्चे वीआईपी बन जाते थे। भाई वो तो अमीर वाला घर है। सब पूछते पिक्चर चल रही है, हीरो ने क्या किया बता दो। सो कोई अंकल पूरी स्टोरी अपडेट देते थे कि अभी विलन आ गया, फिर लाइट चली गई, ठीक है। मतलब पूरी कॉलोनी बेसिकली मोहल्ला जो हुआ करता था, एक ही फिल्म देख रहा होता था, बिकॉज एक ही फिल्म उस टाइम पे जो है एक ही चैनल पे आती थी, और एक ही पावर कट से परेशान सभी रहते थे। फिर जैसे ही लाइट वापस आती, सभी एकदम ऐसे ताली वाली बजा कर, एकदम सच में लाइट आने की भी सेलिब्रेशन हुआ करती थी। और टीवी ऑन करके सबसे पहला रिएक्शन कि यार कितना बस हो गया, अब उसको रिवाइंड नहीं कर सकते, इसका कैचअप नहीं ले सकते, ना स्ट्रीम कर सकते, जो निकल गया वो अगले टेलीकास्ट तक रह गया। शायद इसीलिए हम उस वक्त टीवी को सिर्फ देखते नहीं थे, उसका इंतजार भी किया करते थे, और शायद इसी इंतजार की वजह से हर संडे वाली फिल्म आज भी यादों में फुल पिक्चर HD क्वालिटी में चलती है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर यूं ही बातें करते रहेंगे 90s वाली मस्ती, 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हैं 90s वाली अंतरा के साथ।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। Time to raise the bar. Mosti Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week, full on Renuka style. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
1: इतना भारी कि क्या ही बताएं आपको। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराप के साथ चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई 90s में हम स्कूल पढ़ने जाते थे या वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करने, तभी मैं सोचूं कि ये डंबल मुझसे उठ जाते हैं कैसे, क्योंकि हमने ये प्रैक्टिस तो 90s से कर रखी है। भाई स्कूल बैग उठाते ही लगता नहीं था कि आज तो कंधों का वर्कआउट फ्री में हो गया। मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, ड्रॉइंग की वो या तो फाइल या वो बड़ी वाली रेक्टेंगल वाली जो नोटबुक, देन ज्योमेट्री बॉक्स, देन वाटर बॉटल, देन लंच बॉक्स, ऊपर से आज पीटी है तो शूज भी लेके जाने हैं। लगता था बैग नहीं पूरा घर पैक करके लेकर जा रहे, और टाइम टेबल उसकी तो अलग ही कहानी रहती थी। रात को बैग पैक करते वक्त एक ही टेंशन कि कल कौन सी बुक्स हैं, और अगर गलती से एक बुक रह गई बस टीचर का वो क्लासिक सा डायलॉग, व्हाई आर यू सो केयरलेस, व्हाई। और याद है नई बुक्स मिलते ही सबसे पहला काम क्या होता था, ब्राउन का बाउंड वाला पेपर कवर चढ़ाओ, उस पे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवर चढ़ाओ, फिर वो सफेद कलर का नेम स्लिप लगाओ जिसमें बहुत ही अच्छी सी हैंड राइटिंग में हम लिखते थे नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर। और उसके बाद बुक को देख कर लगता था अब तो इस बार हम डिस्टिंक्शन लेकर आएंगे मम्मी। कुछ लोग तो कलरफुल स्टिकर्स भी उसमें लगाते थे, प्लास्टिक कवर के अंदर टाइम टेबल फोल्ड करके रख देते थे। कितनी केयरफुली हम बुक्स संभालते थे ना, एक पेज अगर मुड़ गया तो लगता था जैसे कोई बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया हो। और स्कूल बैग का जिप अगर बीच साल में टूट गया तो कुछ ऐसा टेम्पररी सोल्यूशन मेरी माँ ने निकाल रखे थे, सेफ्टी पिन है ना, या तो वो सिलाई कर देती थी जब उनके पास टाइम होता था, बट अगर टाइम नहीं है तो इमीडिएट जुगाड़ होता था कि सेफ्टी पिन से अभी तो फिलहाल काम चला लो बेटा, ये ऐसे ही रहेगा। आजकल के बच्चों के बैग्स मैंने देखे हुए हैं, भाई साहब क्या ही, एक तो शानदार बैग्स और ऐसी वैरायटी तो मतलब दिमाग ही खराब हो जाए वैसा वाला फील आता है। बट दे आर मच लाइटर बिकॉज दे हैव लॉकर्स एंड ऑल स्कूल में, जहाँ पे वो अपनी किताबें वहां पे रखते थे। हमें अब लगता है कि हमें क्यों नहीं दिया ये वाला फैसिलिटी। जो नोट्स वगैरह टैबलेट्स में कन्वर्ट हो गए हैं, होमवर्क भी ऑनलाइन हो गया है, लेकिन 90s का स्कूल बैग सिर्फ बुक्स नहीं उठाता था, उसमें हमारे सपने, लंच की खुशबू, रिपोर्ट कार्ड का डर और दोस्तों के साथ हर दिन की कहानी भी छुपी होती थी। और इसीलिए आज भी अगर कहीं वो ब्राउन पेपर कवर्ड नोटबुक दिख जाए, दिल ऐसे ही बोल उठता है कि यार ये तो बिल्कुल हमारे स्कूल वाली फीलिंग है। तुम्हारे आजकल के टाइम पे भी ऐसा होता है? आई थिंक मैंने किसी को कहा ही था उसका नोटबुक पे कवर देखकर, एंड आई वाज सो अमेज्ड बिकॉज इट यू नो टेलीपोर्टेड मी बैक टू दोज 90s वाले स्कूल वाले दिन। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, जी हाँ हम वहीं पे रहना वाले हैं और वहीं पे रहना चाहते हैं क्योंकि यह मस्ती 90s मिक्स टेप।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कसल से कसल की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: क्लास में बैठ के जो है लंच बॉक्स खोलना, इट वॉज अ टोटल टीम एफर्ट। ठीक है, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतरा आपके साथ मस्ती 90s मिक्स टेप चल रहा है। और अगर आप शनिवार के दिन इसको सुन रहे हो तो आप ऑनकोर सुन रहे हो। बाय द वे जो है आज है फ्रेंडशिप डे, एंड तभी मैं बोल रही हूँ कि दोस्तों का साथ, अगर आपको कोई पसंद भी नहीं करता था क्लास में, तो वो भी एक अलग ही हमारा एक बीच वाला पॉइंट डिसाइड हो गया था, एटलीस्ट विद द लंच बॉक्सेस एंड विद द पीपल जिनके लंच बॉक्सेस में खाना बहुत टेस्टी आया करता था। तो क्या है ना कि उस टाइम पे पराठा सब्जी एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स यूज टू बी अ वेरी कॉमन थिंग। थिंग विद देम इज कि उसकी आती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू। देखो तेल तो आता ही आता है बिकॉज दैट इज मैंडेटरी, बट जैसे ही आप टिफिन का डब्बा खोलते हो ना, तो वो खुशबू जो फर्राटे से पूरी क्लास में फैलती है, एंड वी ऑलवेज थॉट यू नो ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास फ्रॉम द बैक टू द फ्रंट, हर कोई ये सोचता था कि सिर्फ हमें पता है। भाई टीचर भी उसी क्लास में खड़ा हुआ है, आई एम श्योर उसका नाक कभी भी उसको ये नहीं, उसको भी समझ में आता होगा। फॉर अ वेरी गुड लॉन्ग टाइम वी थॉट दैट टीचर को तो कुछ पता ही नहीं चलता होगा, बट वेल टिफिन यानी कि लंच पीरियड होने से पहले ही टिफिनें खुल जाया करती थी क्योंकि भूख इतनी जोर से लगती थी। टिफिन जब खुलता था पूरी क्लास को पता चलता था कि कोई तो टिफिन खुला हुआ है, बट खुशी की लहर ये दौड़ती थी कि वो जो टिफिन है ना, वो ये डिसाइड हुआ है पूरी क्लास में कि वो पूरे में रोटेट होगा। तो जैसे ही टीचर ब्लैकबोर्ड में लिखने के लिए पीछे मुड़ी नहीं कि भाई टिफिन पास हुआ नहीं, फिर वो डेस्क टू डेस्क जो है वो नीचे वाला जो ड्रॉअर होता था ना, उसमें शिफ्ट होता रहता था, और हम बस यही दुआ करते थे। सी हर क्लास में एक दो ऐसे वो वाले बड़े ही यू नो पड़ाखू टाइप के और वैसे बड़े इरिटेटिंग इस तरह के जो है कैरेक्टर्स भी हुआ करते थे, जिनका एक ही मकसद था, हमें तो टीचर को करना है इंप्रेस। वो कहते थे टीचर को समबडी इज ईटिंग इन द क्लास। एंड अब देखो जो टीचर अभी तक इग्नोर भी कर रहा था ना, अब उस वो पड़ गया है बहुत ही असमंजस में कि अब तो मुझे यू नो आई विल हैव टू कॉल इट आउट। सो जब हम 11th 12th क्लास में आ गए थे, तो हमारे जो अकाउंट्स के टीचर थे और बिजनेस स्टडीज की टीचर थी, तो ये ना आई गई कर देती थी बात कि अच्छा ठीक है यार, कोई नहीं यार, ये बच्चे इस उम्र में ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बट थोड़े जो पहले क्लासेस की अगर मैं बात करूँ, क्लास 8th 9th 10th, ओ माय गॉड इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल हो जाया करता था। और फिर प्रिंसिपल के जो है द्वार पे हम लोग खड़े मिलते थे कि आपके बच्चे जो है ऐसे ऐसे करते हैं क्लास में, और जिसका टिफिन है एक तो उसका हम टिफिन फिनिश कर रहे हैं ना, और वो अलग प्रिंसी के रूम के बाहर खड़ा हुआ है, उसकी ना मतलब हर तरफ से जो है ऐसे हो जाता था। बट या दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी फॉन्डेस्ट मेमोरीज ऑफ आर फ्रेंड्स 90s के टाइम पे। आई एम श्योर यू ऑल्सो हैव अमेजिंग मेमोरीज लाइक दीज अपने दोस्तों के साथ, जरूर हमें बताया 9158963 पर। लेकिन फिलहाल 90s हमारी दोस्ती की तो जो बात ही कुछ और होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, 90s वाली दोस्ती के साथ साथ 90s वाले गाने भी चलते रहने चाहिए।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स्ड डे।
1: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ, और चल रहा है यहाँ पर मस्ती 90s मिक्स टेप। कभी जब आप 90s के गाने को ध्यान से देखें ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप नोटिस करोगे, हीरो बदलते थे, हीरोइन बदलती थी, लेकिन बैकग्राउंड के डांसर्स वहीं रहते थे। एक फिल्म में शाहरुख खान के पीछे डांस कर रहे, अगली फिल्म में सलमान खान के साथ डांस कर रहे, फिर गोविंदा के गाने में भी वही फेमिलियर फेसेस। उस वक्त शायद हमने इतना नोटिस नहीं किया होता, टू बी ऑनेस्ट नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर आज आप पुराने उन गानों को देखो तो लगता है कि अरे यार, ये तो पिछले गाने में भी था बंदा। और इसके आई थिंक श्यामक दावर का डांस ट्रूप के जो चेहरे हैं वो ज्यादा पहचान में अलग से आ जाते थे, और इसके पीछे की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। सो 90s में बॉलीवुड के पास कुछ प्रोफेशनल डांस ट्रूप्स हुआ करते थे, जो लगातार अलग अलग फिल्म्स और सॉन्ग्स में परफॉर्म करते थे। कोरियोग्राफर्स अपनी ट्रस्टेड टीम्स के साथ काम करती थी, सो इसीलिए फेमिलियर डांसर्स हर दूसरे हिट गाने में नजर आ जाते थे। और ये भी कमाल की बात है कि इन्हीं बैकग्राउंड डांसर्स में से बाद में कई लोग खुद बड़े कोरियोग्राफर्स, डांस डायरेक्टर्स और परफॉर्मर्स बन गए। फारा खान की डांस टीम से लेकर इंडस्ट्री के कई टैलेंटेड आर्टिस्ट्स ने बैकग्राउंड डांसर के जो के रूप में ही अपना जो है जर्नी शुरू किया। मतलब जिनको हम उस वक्त सिर्फ क्राउड का हिस्सा समझते थे, वही लोग बाद में बॉलीवुड के बड़े नाम बन गए। एंड ऑनेस्टली 90s के गाने सिर्फ हीरो हीरोइन की वजह से यादगार नहीं थे, उनका वो जो एनर्जेटिक बैकग्राउंड डांसर्स, उनका भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन था। हर सॉन्ग को एक अलग ही जान दे देते थे, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, परफेक्ट फॉर्मेशंस और वो सिंक्रोनाइज्ड स्टेप्स, सब मिलकर ही वो मैजिक क्रिएट करते थे। सो वेल, जब भी कोई गाना देखे, अब पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन गोरिया रे मेरे दिल चुरा के ले जा, अब ये गाना पहाड़ों पे शूट हुआ, ठीक है, और पीछे कितनी सारी लड़कियां जो है वहां पे जूही चावला के पीछे ये वाला डांस कर रही होती है, ध्यान नहीं किया, बट दे ब्रिंग आउट सो मच राइट इन द होल सीन, एंड एज इफ वो भी एक तरह से एक किरदार प्ले कर रहे हो इस कहानी में। वह मुझे लगता है कि जब मस्ती 90s मिक्स टेप की बात होती है तो इन लोग की भी बातें जरूर होती रहनी चाहिए, बिकॉज दे मेड ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, यू स्टे ट्यून्ड, बिकॉज या वी आर गोना बी हियर फॉर अ लिटिल मोर टाइम।

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

वॉकमैन किसी को देना, बाप रे बाप, ऐसी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती थी, ऐसा लगता था किसी ने हमारी किडनी मांग ली हो। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ 90s वाली, एंड यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। अगर 90s में किसी ने आपसे अगर ऐसा पूछा कि यार तेरा वॉकमैन थोड़ी देर के लिए मिलेगा क्या, तो समझ जाना चाहिए ये एक रिक्वेस्ट नहीं है, ये ट्रस्ट का टेस्ट है, इम्तिहान है। वॉकमैन उस जमाने का स्मार्टफोन था सर, सो उसको संभाल कर रखना, उसकी बैटरीज बचाना, और सबसे जरूरी कैसेट अंदर से अटकनी नहीं चाहिए। याद है एक ईयरफोन आपके कान में, एक दोस्त के कान में, और दोनों बिना कुछ बोले एक ही गाना एंजॉय करते रहते थे। वो शेयरिंग सिर्फ म्यूजिक की नहीं होती थी, मोमेंट्स की भी होती थी। और फिर आता था कैसेट फ्लिप करने का मोमेंट, एक साइड खत्म, क्लिक, कैसेट बाहर, पलट कर अंदर, प्ले। आजकल प्लेलिस्ट ऑटोमेटिकली, यू नो, आप AI जो

वो समझ जाता है कि इसको तो इस तरह के गाने पसंद है, तो एक के बाद जो है चलते रहते हैं वो वाले गाने। उस वक्त थोड़ा सा एफर्ट लगता था और शायद इसीलिए हर गाना और भी ज़्यादा स्पेशल लगता था। वॉकमैन की सबसे बड़ी टेंशन डबल ए बैटरीज, बैटरी वीक होते ही गाने की स्पीड धीरे धीरे ऐसे धीमी धीमी हो जाती थी, सिंगर की आवाज़ भी काफ़ी फनी सी हो जाती थी। और इससे जुड़ी जो है, उस वक्त ओरिजिनल म्यूजिक कैसेट ना हर किसी के बजट में नहीं हुआ करता था, इसीलिए बहुत लोग रेडियो से अपने फेवरेट गाने रिकॉर्ड किया करते थे। बस रिकॉर्ड और प्ले का बटन एक साथ दबाना पड़ता है और जैसे ही जो है अनाउंसर ने बोलना बंद किया उसका बस इंतजार करते थे। कभी परफेक्ट रिकॉर्डिंग मिल जाती थी, कभी गाने के बीच में जो है अनाउंसर की आवाज भी रिकॉर्ड हो जाती थी और वो भी याद का एक हिस्सा बन जाया करता था। आज हमारे पास मिलियंस ऑफ सॉन्ग्स एक टैप पर है, बट उस वक्त 90s के टाइम पे एक कैसेट में रिकॉर्ड किए हुए 10 फेवरेट गाने पूरा खजाना लगा करते थे। 90s में म्यूजिक सिर्फ सुना नहीं जाता था दोस्त, उसके लिए थोड़ा सा वेट भी किया जाता था और बहुत सा प्यार भी। मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
2: पिक्चर शुरू होने से पहले ही सिनेमा हॉल की अपनी ही कहानी हुआ करती थी। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो। आजकल मल्टीप्लेक्स में बैठते ही स्क्रीन पर ट्रेलर्स और ब्रांड के एड्स वगैरह और काउंटडाउन जो है वो शुरू हो जाता है, लेकिन 90s के सिंगल स्क्रीन के थिएटर्स की बात ही कुछ और थी। पिक्चर शुरू होने से पहले स्क्रीन पे एड्स नहीं दोस्त, स्लाइड्स चलती थी। याद है वो ब्लैक कलर के स्क्रीन पर एक एक करते हुए आती हुई कलरफुल स्लाइड्स, साइलेंस प्लीज, फिर आता था नो स्पोकिंग, फिर जो लोकल बिजनेसेस के एड्स वगैरह होते थे, गुप्ता स्वीट्स, शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स, राजा टेलर्स, बीच बीच में कमिंग सून। उस वक्त ट्रेलर देखने का एक्साइटमेंट ही अलग था बॉस, लेकिन इन स्लाइड्स को भी हम बड़े ध्यान से देखते थे, शायद इसीलिए क्योंकि पिक्चर शुरू होने का एक्साइटमेंट हर सेकेंड बढ़ता जा रहा होता था। इंटरवल में स्क्रीन पर समोसा, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और कैंटीन के एड्स देखकर अचानक सबको भूख लग जाया करती थी। फिर एक क्लासिक डायलॉग आता था कि इंटरवल में ही लेना, पिक्चर शुरू होने के बाद नहीं। फिर सीधा दौड़ लगती थी काउंटर पे लाइन लगाने के लिए, पॉपकॉर्न वगैरह के लिए। उसके पीछे जो है बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, 90s के सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के लिए ये लोकल स्लाइड के एड्स सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं थे, इनकम का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ करता था। मल्टीप्लेक्स कल्चर आने से पहले लोकल शॉप्स एंड बिजनेसेस अपनी एड्स सिनेमा स्लाइड्स पर चलवाते थे और उस एड्स के रेवेन्यू से थिएटर्स को अच्छी अर्निंग भी होती थी। यानी फिल्म शुरू होने से पहले जो 2-3 मिनट हम स्लाइड्स देखते थे वो भी सिनेमा बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था। आज वो स्लाइड्स शायद कहीं पे गुम हो गए हैं, लेकिन उन्हें देखते ही जो फीलिंग आती थी उसका मतलब सिर्फ एक ही होता था, बस अब पिक्चर शुरू होने वाली है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर यूं ही बने रहे मेरे साथ, क्योंकि बातें तो अभी 90s वाली बाकी है मेरे दोस्त, बट अलोंग विद द 90s वाले गाने।

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल

0: मुसलसल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रॉप के साथ यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। ऑफ कोर्स भाई, चलो थोड़ी बहुत 90s की बात हो ही रही है तो गोविंदा की बात कर ही लेते हैं। अब एक काम करो, 90s के शादी का या फिर कोई फैमिली फंक्शन उसको याद करो आप, ठीक है। डीजे वाले भैया, जैसे ही डीजे वाले भैया तो एक तो साइड में ही रख दो, ठीक है। हमारे डीजे वाले भैया कैसे हुआ करते थे, उनके पास डीजे कंसोल नहीं हुआ करता था, 3-4 साउंड मिक्सर्स जो है वो भी उस टाइम 90s के टाइम पर बड़ा बिग हैवी यू नो स्टफ वो रखे होते साउंड में, और वो हमें उनको कैसेट देना पड़ता था कि इसको, एंड कैसेट भी घर से रिवाइंड और उस गाने पे करना है तो वो उस गाने से जस्ट पहले ऐसे करके, यू रिमेंबर दिस इज हाउ वी यूज्ड टू डू इट राइट। सो एनीवेज, ये सारी जब होती थी बातें तो वहां पर अचानक से एक बंदा या बंदी बन गोविंदा की आत्मा आ जाती थी। ब्राइट येलो शर्ट, रेड या ग्रीन पैंट्स, मैचिंग बेल्ट और कॉन्फिडेंस इतना जैसे अगला फिल्म फेयर अवार्ड इसी परफॉर्मेंस के लिए इसको मिलने वाला हो। उस वक्त कोरियोग्राफी परफेक्ट होना जरूरी नहीं था, गोविंदा वाली एनर्जी होना चाहिए थी। यू रिमेंबर वो जो गोविंदा वाले अंकल अभी हाल ही में वो काफी वायरल हुए थे, किसी शादी फंक्शन में उन्होंने गाने पे में से मीना से ना आपके आ जाने से बताओ वायरल हो गए, एंड कैसी गोविंदा की याद दिला दी। बट इट वॉज सो वेरी 90s राइट, बिकॉज दिस इज हाउ इट वॉज सपोज टू बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हमने गाना डिसाइड कर लिया, उसके बाद फिर हम उसमें फुल ऑन, आई थिंक आई गेट माई डांसिंग कीड़ा राइट फ्रॉम देयर। आई एम नो कोरियोग्राफ्ड एंड ये सारा चीज, आई एम अ टोटल लाइक फ्री, कुछ भी आप कुछ भी बजा दो, जनरेटर बजा दो, मेरे तो मस्ती में नाच लेना है एंड आई कंप्लीटली इंजॉय इट। इट इज सो वेरी 90s। मैं तब भी डांस किया करती थी, मेरी एक कजन है जिसकी शादी पर मैं गई हुई थी इस साल फरवरी में, इफ़ यू रिमेंबर, तो फरवरी में था हाँ, तो उसके संगीत पे जो है आई मेड श्योर दैट आई डांस्ड, यू नो व्हाई, बिकॉज मैंने उसके मुंडन पे नाचा हुआ था एंड शी शेयर दैट वीडियो विथ मी। गाना था या इरे जोर लगा के नाच रहे, या आई वॉज ऑन द स्टेज और मैं वहाँ पे नाचे जा रही हूँ एंड That version of me was such a bindas person. भाई सब अपना खाना खा रहे हैं, ठीक है, hardly chair पे बैठ के कोई मेरा नाच है, but I never cared about it. मेरा passion इतना दिख रहा था, मैं लगी हुई नाचने में वहाँ पे, but it was so cute. And then you know life came to a full circle when I was dancing on her संगीत. So yeah, what memories man, seriously. Radio Masti 24/7 live पर, that is why I say that 90s kids जो है ना, we can survive anywhere. We have seen a lot. Yeah, stay tuned.

0: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,
1: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us.

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s next day.
2: हाँ जी, बस आज की नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस यहीं पर आकर रुक जाती है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतर आपके साथ। यहाँ पर ऑफ कोर्स आज मस्ती 90s मिक्स टेप में हमने VHS कैसेट रिवाइंड की, सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में वापस जाकर बैठे, कुल्फी वाले की घंटी सुनी, संडे की मूवी के बीच में पावर कट को झेला, हैवी स्कूल बैग्स उठाए, दोस्तों के टिफिन से लेकर एक बाइट भी ले ली, बैकग्राउंड डांसर्स को पहचाना, वॉकमैन को शेयर किया, सिनेमा की स्लाइड्स भी देखी और गोविंदा जैसा डांस भी बिल्कुल वहां पे वो भी कर लिया। तो देखा जाए तो 90s में लाइफ इतनी फास्ट नहीं थी, लेकिन हर मेमोरी फुल स्पीड से दिल तक पहुंच जाती थी और शायद इसीलिए हम 90s को मिस नहीं करते हैं। गैजेट्स के अगर देखा जाए उस जोन में हम उस फीलिंग को मिस करते हैं जब छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी खुशी दे जाया करती थी। अगर आज के एपिसोड ने आपको एक भी बात याद दिला दी या उससे भी ज्यादा, चेहरे पे अगर आपके स्माइल आ गई तो समझिए हमारा मस्ती 90s मिक्सटेप एकदम हिट हो गया है। अगर आपकी कोई मेमोरी जो है आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो जरूर हमें लिखें 9151893 पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। यस, मिलेंगे अगले एक ब्रांड न्यू एपिसोड में ऑफ मस्ती 90s मिक्सटेप। तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड और बाकी बातें अगले एपिसोड में। बाय बाय एंड टेक केयर।

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए ड्यूटी पर। Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
1: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर, मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे। थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: नमस्कार सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: All music is loud. Some songs just sneak in.
1: What
0: makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
2: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं
3: और
2: रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं. Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
4: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
5: Mere Karan Arjun
0: aayenge. Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे.

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे
2: पुरुष ही नहीं महापुरुष है महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: जय

0: नाचने का मन है,
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: Your Musti Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे
2: Take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.
5: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट से बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: सस्याकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats

0: शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan.
1: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में
3: रहो। मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे। पर हाँ, तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: हे बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
2: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक है ना
1: बस चल रहा है भाई
0: व्हाट अबाउट यू
2: हाँ चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
2: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक है ना
1: हाँ ठीक है
0: और तेरा

0: वैसे भी सुना है आजकल भेड़िए लोगों का कीटो डाइट चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
2: तेरा भी बोलना।
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू?
1: आई लेट के रुक गया।

0: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yes, Masti Top 20. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters.
1: हाँ जी, कौन रेणुका? कहाँ है रेणुका? मैं तो यही सवाल पूछना चाहती हूँ. हेलो, हाय, वेलकम, वेलकम, बिल्कुल, नमस्ते. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. गुड इवनिंग. यस, टेंशन मत लो. ऐसा फील आ सकता है आपको कि या तो ये मंडे इवनिंग है या वेंसडे इवनिंग है, क्योंकि अंतरा तो इन्हीं दोनों दिन जो है शाम को आती है. अभी तो हुआ था कि फ्राइडे से शिफ्ट हुआ था थर्सडे को मस्ती टॉप चार्ट्स. थर्सडे को शाम को 5 जब बजते हैं तो रेणुका की आवाज आती है. ये अचानक से अंतरा की आवाज कहाँ से आ गई है भाई? सबसे पहले तो जैसे ही मैं आपको ये विश यानी कि इस दिवस की शुभकामनाएं दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे साथ अब क्या हुआ है. यस डियर डियर माय डियर लिसनर्स, जिन्होंने अभी भी यहाँ पे ट्यून इन किया है, मस्ती टॉप चार्ट्स है, ये थर्सडे का दिन है, ये 30th July है, ये व्हिच इज आल्सो दोस्ती दिवस यानी कि फ्रेंडशिप डे. आई नो, अभी तो गई थी मैं, है ना, अभी सुना था ना मिक्स टेप कुछ घंटों पहले, बट मैं वापस आ चुकी हूँ. प्यार देखो मेरा, प्यार और डेडिकेशन एंड पैशन फॉर वर्क. मेरे को रेज्यूमे में ना इसको बोल्ड बोल्ड लेटर्स में लिख देना चाहिए. बट आज है फ्रेंडशिप डे, तो हुआ कुछ ऐसा कि भाई दोस्ती दिवस के लिए रेणुका आई और उन्होंने बोला कि यू नो इट्स फ्रेंडशिप डे एंड आई वांट टू गिव अ गिफ्ट टू यू. हालांकि आई वाज लाइक वन सेकंड, व्हाई डू आई हैव दिस फीलिंग कि आई नो कि ये सारी की सारी बात कहां जा रही है, किस तरफ. एंड या जस्ट जो आपको लगने लगता है ना आपकी गट फीलिंग में, बस वही हो जाता है. तो दोस्ती दिवस यानी कि फ्रेंडशिप डे पर मुझे तोहफा मिला है यही कि आज मस्ती टॉप चार्ट्स जो है वो मेरे हवाले है साथियों. और इसी खुशी में जब काउंटडाउन मेरे हाथ में दिया हुआ है तो ऐसा कैसे हो जाए कि कुछ क्या ना मचाया जाए. खुशी इस बात की है, आपको भी होगी, कि कई सारे गाने जो आपको लग रहे थे ना अभी तक काउंटडाउन में कि यार इस नंबर पे कैसे है, आपको वो सारी नाराजगियां दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं भी ये सवाल पूछने वाली हूं. नंबर 20 पे फिलहाल आज मस्ती टॉप चार्ट्स के काउंटडाउन में जो है वारी जावा चल रहा था. पिछले हफ्ते मैंने बाहर निकाल दिया, हो गया यार वारी जावा का नया गाना एंट्री मार चुका है. सानो दा इज बैक इन एक्शन, कैन यू बीट दैट. उनकी आवाज में इट्स कॉल्ड बरसात न जाया करो. ओहो हो, एकदम फुल ऑन 90s वाली फील आएगी इस गाने को सुनते हुए. हालांकि एकदम लेटेस्ट गाना है, चार्ट में घुस चुका है. और आज ना ही सिर्फ काउंटडाउन होगा क्योंकि यह देसी दोस्ती एडिशन, तो हम करेंगे बातें दोस्तियों की भी. एक दोस्ती की तो बता ही चुकी हूँ, बाकी आप बताओ. यप, गुड इवनिंग एंड यस लेट्स गो. नंबर 20 पे ब्रांड न्यू एंट्री.
2: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly.

0: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
1: 5 बजकर हो चुके हैं 8 मिनट। वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। एंड बिफोर वी गो, आज के जितने भी अदर देन काउंट ऑन गाने होंगे, इट इज ओनली गोइंग टू बी दोस्ती स्पेशल, बिकॉज आज है फ्रेंडशिप डे। एंड उसी बात पे यहाँ पर जो है देव सोमा सेंट अस दिस वीडियो, इनफैक्ट ऑडियो, एंड आई वॉन्ट यू टू लिसन टू इट।
2: हाय एवरीवन, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल। सो हाउ डू आई बिगिन? द बेस्ट फ्रेंड इन माई लाइफ इज ऑलवेज माई सिबलिंग, माई यंगर सिबलिंग, माई सिस्टर देवरीना। Though I have several other friends, the heartiest moments and the funniest moments that I have ever shared is with Debrina, my younger sister. We have been partners in crime, and we have done many types of things, like preparing when we were young. We used to prepare bonvita food, mixing bonvita, then puffed rice, water, sugar, and all these things. And one day, while we were doing so, we were caught by our mother because the bone vita was totally spoiled. It became very hard. So many other things we have done in the past.
1: That's right. How

0: आर सिबलिंग जब हम अडल्ट हो जाते हैं बन जाते हैं हमारे बेस्टेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स एंड वी शेयर सो मेनी सीक्रेट्स टुगेदर. सो यस, उन सारे दोस्तों का वेरी वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप है. एंड हियर यू गो, दिस इज अ रेट्रो सॉन्ग व्हिच इज लाइक एन ऑल टाइमर एंड यू आर जस्ट गोइंग टू लव इट.
1: Bollywood flashback.

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: What lyrics, man? कहाँ कौन लिख रहा है इस तरह के lyrics अब? And we so crave for it, isn't it? Radio Musti 24/7 live पर good evening. 5:15 हो चुके हैं, 15 मिनट. Musti top charts चल रहा है. This is the दोस्ती edition because आज बीच बीच में जितने भी अलग वाले गाने आएंगे, that is only going to be all दोस्ती related गाने. और कोशिश यही रहेगी मेरी कि आज दोस्ती से related ही बातें हो. थोड़ी देर पहले हम sibling who becomes दोस्त उनकी बात कर रहे थे, and that so very true, because आप जब इतना टाइम किसी के साथ रहते हो तो वो हो ही जाता है. एंड ये सारी जो बहुत गहरी एक फीलिंग होती है दोस्ती को लेकर, वो आई थिंक जब हम लोग जिंदगी के ये पड़ाव में ना, मतलब अपने सेकेंड इनिंग्स में जब आते हैं, तो वो ज्यादा सिंसियर हम हो जाते हैं. मतलब बाल नोचा नोची और ये सारी चीजें नहीं होती. मैं और मेरा भाई जैसे है, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स नाउ. पहले वो मुझे सिर्फ मतलब से कॉल करता था कि उसको हेडफोन्स चाहिए, उसको नया फोन चाहिए, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. बट नाउ वी आर इन अ वेरी वेरी डिफरेंट, यू नो, काइंड ऑफ दोस्ती ऑल टुगेदर. सलमान खान और सोहेल खान भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं. सो इफ यू डोंट नो, सोहेल खान इज अपेरेंटली इन दिस रियलिटी शो व्हिच इज कॉल्ड अलायंस. उसका कॉन्सेप्ट क्या है, जिस दिन मुझे समझ में आ गया मैं आपको जरूर बता दूंगी, बट इतना समझ लो कि एक रियलिटी शो है जहां पर ही वो सीन, यू नो, भाई को, मतलब सोहेल खान को कीबोर्ड यूज करना नहीं आता. आई मीन, या वाई एम आई सेइंग इट लाइक, हो ही सकता है ना. अंतरा, यू आर अ गुड गर्ल, ओके, काम डाउन. ये तो हो गया ये. बट वहां पर जहां पे उनकी एक्स वाइफ सीमा सचदेव को आना चाहिए था, वो नहीं आई. बट सपोर्ट करने अपने भाई को कौन पहुंचा? सलमान खान. भाई आजकल कहीं बहुत ज्यादा जा नहीं रहे हैं, बट फैमिली के लिए हमेशा सलमान खान इज ऑलवेज देयर. अब क्या करें, उनका तो नेचर ही कुछ ऐसा है ना. अब क्या करें, मेरा भी तो देखिए नेचर कुछ ऐसा ही है. दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी. फ्रेंडशिप डे का गिफ्ट रेणुका ने दिया है, तो मस्ती टॉप चार्ट्स करना ही पड़ेगा. टॉप चार्ट्स तो मैं जैसे नंबर 20 से, तो वो गाना मैंने टॉप चार्ट से आउट ही कर दिया. अगले हफ्ते अगर वो करेंगी शो तो देखा जाएगा. नंबर 19 पर भी जो वेलकम गाना इन्होंने रखा हुआ था, मुझे लगा था यार थोड़ी और इज्जत उसको देनी चाहिए, इसीलिए 19 पे अपना चेहरा जो कि 16 नंबर पे था, आज 19 पे आएगा. 18 पे जो साथ, सचेत तंदन की आवाज में जो गाना है, दैट इज गोइंग टू स्टे वेयर इट इज बिकॉज आई थिंक दैट्स द करेक्ट प्लेस. बाकी और कितना मैंने काउंटडाउन को केओटिक कर दिया है ऊपर नीचे, जानने के लिए सुनते रहिए टिल 8 PM. स्टे विद मी ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. हैप्पी फ्रेंडशिप डे.
0: Trending song number 19.
3: Meri aankhein soti hain magar ye dil jaagta hai. Hai meri pyari chaliya.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: They are fresh. They are.

0: टू रूलिंग द काउंटडाउन. ये है मस्ती टॉप 20. नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स.
1: Trending song number 18.

0: आई होप आप मेरे साथ हो, क्योंकि आज है दोस्ती दिवस और इस दोस्त को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस दोस्त को गिफ्ट के नाम पे आज काम मिला है काम। और ये 5 बजकर हो चुके हैं 25 मिनट। दिस मस्ती टॉप चार्ट्स, यस मैं हूं अंतरा, यहाँ पर आई एम टेकिंग यू द थ्रू द टॉप चार्ट्स टुडे बिकॉज इट्स फ्रेंडशिप डे और एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। अब मेरी दोस्त रेणुका ने जो है बोला कि अंतरा हम आज फ्रेंडशिप डे पे आई गिव यू द ऑनर ऑफ होस्टिंग मस्ती टॉप 20, तो मतलब मैंने कहा ओके ठीक है कोई बात नहीं, हमें तो मौका चाहिए, मेरा जिम वाला गाना ओए ओए नंबर 1 पे लड़ेगा, क्या कहते हो? मतलब कि जब वो अगले हफ्ते आए सब इनसे सवाल पूछे कि हमने जो पिछले हफ्ते सुना था आई थिंक द चार्ट्स वर मच बेटर नंबर्ड, या पूछ लेना अगर नहीं भी मन करे तो। बट कमिंग बैक टू यस, आज जो है टॉप चार्ट्स का काउंटडाउन काफी ऊपर नीचे, काफी सारी चीजें मैंने हिला हुलू दिया है बिकॉज दैट्स व्हाट आई डू, अब दिया है तो लेना भी तो पड़ेगा, राइट राइट। सो वेल, कुछ बात ऐसी हो गई है कि अब इससे पहले कि हम अगले जो है गाने पर आगे बढ़े, मैं ये कह रही थी कि ये जो है विकी कौशल बड़े दिन से थोड़े से खोए खोए से नजर आ रहे हैं, मतलब कोई उनकी बात वारदात भी नहीं समझ में आ रही है। सो वेल भाई, छावा वाले हमारे विकी कौशल जो है ही इज अपेरेंटली गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर हिज अनदर बिग फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन येट। भाई 25 kg गेन करने को बोला है अगली मूवी महाअवतार के लिए। आई मीन या एंड यू नो इन फिल्म प्रिपरेशन दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। आपके दोस्त भी आके बोलते हैं आपको और खाना है, मतलब सर न्यूट्रिशनिस्ट भी बोल रहा है कि सर आपको खाना है क्योंकि आपको वजन बढ़ाना है, ये किसी ने नहीं बताया कि इसको घटाने में कितनी ज्यादा जाती है जान। बट उस बारे में कभी और बात करेंगे, आज तो है दोस्ती दिवस और आपके साथ मुझे मनाने को मिल रहा है सुबह एंड शाम, नॉट बैड नॉट बैड। भाई कमिंग अप नेक्स्ट इज अनदर ब्यूटिफुल दोस्ती वाला गाना, दैट्स वॉट वी आर डूइंग। काउंट डाउन पे जो गाने चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, बट उसी के साथ साथ आज सिर्फ और सिर्फ दोस्ती वाले गाने बीच बीच में आएंगे। इट्स वन ऑफ ऑल ऑफ आवर्स वेरी फेवरेट केके की आवाज में, जब भी दोस्ती का नाम लिया जाता है तब तब ये गाना जहन में आता है एंड इट जस्ट मेक्स यू फील सो नॉस्टैल्जिक, मेक्स यू रिमेम्बर योर फ्रेंड्स, मेक्स यू फील लाइक काश हम दौड़ के भाग के अपने दोस्तों को गले से लगा लेते। यस, हैप्पी फ्रेंडशिप डे।
1: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: It's time for
1: Musty Song of the Hour.
4: Song of the Hour.

0: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
1: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
2: मस्ती टॉप चार्ट्स आप सुन रहे हैं यहाँ पर विद मी अंतर राग। गुड इवनिंग, नमस्ते। कमिंग अप नेक्स्ट इज नंबर 17। भाई पिछले हफ्ते इधर एक छाप तिलक नाम का जो है सॉन्ग बैठा हुआ था, बड़े दिनों से बैठा हुआ था। आप नहीं बोर हो गए, बट देखते ही मैं जरूर बोर हो गई और मैंने काउंटडाउन से उठा के उसको बाहर ही फेंक दिया, लाइक इट इज नॉट गोइंग टू बी देयर। और वेलकम का टाइटल ट्रैक जो कि पता नहीं क्यों 19 नंबर पे बैठा हुआ था, मुझे लगा कि यार इतनी इज्जत तो 17 वाली तो हम दे ही सकते हैं इसको। तो Coming up next is number 17 pe title track of Welcome to the Jungle. Good evening.
0: Trending song number 17.

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: चुन चुन के हर एक दोस्त से आज मैं अपना गाना गाऊंगी और उसके बाद जो है सारे मेरे दोस्त जो है जो ट्यूनिंग है इस वक्त पर सब पूछेंगे अगले हफ्ते रेणुका से कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, अच्छी है वो लड़की, अच्छी है अंतरा, क्यों उसके साथ ऐसा किया। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा आपके साथ यहाँ पे मस्ती टॉप चार्ट्स ऑफ कोर्स यहाँ पर चल रहा है। एंड बिफोर वी मूव ऑन टू द काउंटडाउन, 5 बजकर हो चुके हैं यहाँ पे, 40 मिनट अपना आंटी भी ट्यून इन कर चुकी है, उनके साथ भी मैंने थोड़ा सा रोना गाना यहाँ पर कर लिया है। बट यू नो क्या है ना कि दोस्ती कुछ ऐसी ही है, एंड आई थिंक फ्रेंडशिप एंड फ्रेंड्स ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत वाला रिश्ता होता है, आपको नहीं लगता? बिकॉज ऑल द मोर ये वो रिश्ता है जो हम खुद चूज करते हैं, बाकी सारी चीजें माँ बाप हो गए, सिबलिंग्स हो गए, ये सब हमारे खून के रिश्ते नाते रिलेटेड ये वो, बट दोस्त एक एंटायरली डिफरेंट बैकग्राउंड, एंटायरली डिफरेंट फैमिली, कभी कभी एंटायरली डिफरेंट पर्सनालिटी के साथ आता है और आपकी जिंदगी इतनी ज्यादा बदल के चला जाता है दैट यू चेरिश ईच एंड एवरी मोमेंट विद दैट पर्सन। आई मीन आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड, उसका नाम निवेदिता है और वो कानपुर में रहती है, मैं और मेरी वो स्कूल की फ्रेंड भी नहीं है, होता है ना लोग तो बहुत मतलब पुराना स्कूल का दोस्त है ना, मैं उसको अपने जिंदगी के एक बहुत ही बीच पड़ाव में मिली, बट समहाउ लगता है ना इट वॉज जस्ट मेंट टू बी। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आज के दिन में एनी सिंगल थिंग वो जान है वो मेरी, एंड आई एम सुपर पोसेसिव अबाउट हर, एंड आई होप शी इज एज वेल। ये मैं उसको हमेशा कहती हूँ, भाई वो इतनी पॉपुलर है, उसके आसपास इतने सारे लोग रहते हैं और मैं इतनी दूर रहती हूँ, तो मुझे कभी कभी लगता है कि देख मेरी जगह मेरी है। सो ये सारी चीजें चलती रहती, टिल डेट वी काइंड ऑफ टीज ईच अदर, बट नोबडी अंडरस्टैंड्स हर बेटर देन मी, नोबडी अंडरस्टैंड मी बेटर देन हर, एंड दैट्स हाउ इट इज, एंड दैट्स हाउ इट इज सपोज्ड टू बी। आपको कोई ऐसी बात याद है अपने किसी भी एक दोस्त के साथ कि आपने मिलके दोनों ने टीम वर्क करके कोई शरारत की हो और आज भी उसको याद करते हुए यू जस्ट यू नो काइंड ऑफ स्माइल? Do you remember something like that? 9158963. Badai, I am very much interested in knowing that. While, of course, यहाँ पर countdown पे आगे बढ़ते हुए number 16 पर जो है अपना चेहरा नाम का एक जो है गाना इन्होंने लगाया हुआ था, जो मैंने बहुत ही प्यार से 19 पे डाल के निकाल दिया ऊपर की तरफ, और अब आएगा यहाँ पे भूत भंगला से तू ही दिसदा। Stay tuned because it is going to be an absolutely amazing, exciting and magical evening on a friendship day, Radio Musty 24/7 live. Stay tuned.
0: Trending song number 16.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: Friends who play pranks with each other, Radio Musti 24/7 Live. मैं हूँ अंतरा के साथ. यहाँ पर टॉप चार्ट्स जो है वो आज अंतरा के साथ आप स्पेंड कर रहे हैं. काउंटडाउन आपको थोड़ा सा हल्का हल्का अलग नजर आ रहा है, सुनाई दे रहा है. वो इसकी वजह ये है कि ऑफकोर्स मैं आई हूँ, मुझे दिया गया है शो, आज मेरा है, तो काउंटडाउन में गाने भी मेरे हिसाब से ही चलेंगे. वैसे तो मुझे किसी बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान ने कहा कि आज काउंटडाउन अंतरा पूरा 90s बना दो, तुम्हारा हुक्म चलेगा. फिर मैंने कहा कि हाँ, फिर मैं बोल दूंगी किसने मेरे को सजेस्ट किया है. और फ्रेंडशिप डे वाले दिन हम किसी को मना नहीं करते, अच्छी बात नहीं होती है. लिसनर की बात सुननी चाहिए हमेशा, फीडबैक लेते रहना चाहिए. बट फिर नहीं, वैसा तो नहीं हुआ. बट बीच बीच में ये 90s वाले जो गए गाने हमारे दोस्ती यारी वाले बिल्कुल ही चल रहे हैं. वेल, ये सिलसिला 8 बजे तक यूं ही चलता रहेगा. बट यस, प्रैंक्स खेलना एक दूसरे के ऊपर, दैट इज ऑल्सो दोस्ती का एक हिस्सा. मैंने भी खेला हुआ है ये शो, जिसके हवाले है यानी कि रेणुका के साथ एक बहुत ही वेल प्लान्ड प्रैंक जो है मैंने खेला था. और तब तो मैं उतनी अच्छी दोस्त भी नहीं थी इनकी. आई थिंक उसके बाद से ही हमारी असली दोस्ती शुरू हुई. क्या हुआ था बताएंगे. लेकिन फिलहाल इस घंटे को करते हैं पड़ावर से रैप अप. कमिंग अप इज नंबर 15. भाई, ये चुनरी गाने को क्यों नंबर 5 पे कैसे आप झेल रहे थे भाई? नंबर 5 पे इसको, मेरे हिसाब से तो नंबर 15 पे आना चाहिए. वैसे तो निकल ही जाना चाहिए इसको इस काउंटडाउन से, लेकिन 15 ठीक है. क्या कहते हो? आई एम श्योर यू अग्री विथ मी. लेट्स गो.
0: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 15.

0: दस का बीस।
1: अरे अरे, अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
3: Masti top charts with Renuka? एक्सक्यूज मी, थर्सडे है और रेणुका कहाँ है? ये सवाल आपको रेणुका से पूछना चाहिए। मेरी बहुत ही फाजल दोस्त जो है मिलॉर्ड, आज फ्रेंडशिप डे गिफ्ट के नाम पे मुझे अपना टॉप चार्ट्स गिफ्ट करके यहाँ पर चली गई है। नहीं सिर्फ हम यहाँ पे मजे ले रहे हैं, लिसनर्स भी मेरे मजे ले रहे हैं। हाय सलमा, गुड इवनिंग, हैप्पी फ्रेंडशिप डे।
4: हेलो अंतरा, गुड इवनिंग, अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे।
3: सलमा अभी बहुत ही तमीज का साउंड कर रही है ये, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ना अभी इसको पता है कि ये ऑन एयर है, तो अभी ये बहुत ही सुधरी हुई एकदम ऐसा वाला उसका आवाज आपको सुनाई दे रहा है, बट ये एकदम मेरे जैसे एकदम नॉटी मस्ती खोर है। बट वेल सलमा जो है, सलमा सबसे पहले तो थैंक यू फॉर गिविंग मी सच एन ऑनर ऑन फ्रेंडशिप डे। इतना प्यारा सा मैसेज तुमने,
4: थैंक यू सो मच चंद्रा फॉर रेसिप्रोकेटिंग इट इन द सेम वे, लाइक
3: है ना। मैं ये पूछ रही थी आज
4: वाइब है आपके साथ।
3: मुझे ये बताओ कि जो हमने अभी पूछा कि कोई एक फनी इंसिडेंट, कि जब भी आप अपने दोस्त के साथ कुछ एक ऐसा फनी करते हो एंड आज भी बैठ के सोचते हो तो यू काइंड ऑफ स्माइल अबाउट इट, व्हाट इज दैट वन इंसिडेंट फॉर यू?
4: तो एक बार ना ऐसा हुआ कि यहीं पे सिंगापुर में सब फैमिलीज मिलके, मेरे फ्रेंड्स जो है सभी मिलके गैदरिंग हो रही थी, इट वाज अ गेट टुगेदर। तो एक फ्रेंड के हस्बैंड है हु वाज लाइक, मतलब उन्होंने रिसेंट डाइट शुरू की थी कि मतलब मैं फ्राइड नहीं खाऊंगा, मैदा एंड ऑल। तो हम सब बैठ के समोसे खा रहे थे, तो वी ऑफर्ड हिम, तो ही वाज लाइक नहीं नहीं ये तो अनहेल्दी है, तो आई वोंट ईट। तो मैं बोली कि नहीं रुक जाओ, एयर फ्रायर है, हम एयर फ्राई करके दे देंगे, सो दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। हाँ ठीक है। फिर हम गए किचन एंड 10-15 मिनट के बाद I just changed the plate, put the same samosa and we offered him and he ate happily. And he was like, "Re taste to bilkul bhi change nahi hua, it's so good, I'll buy a air fryer." Till date he doesn't know ki unhone deep fried hi khaye the.
3: भाई मैं जो कहती हूँ कि देखो डीप फ्राई का टेस्ट तो डीप फ्राई का टेस्ट ही होता है, आप ना उसमें कुछ कर नहीं सकते, ऐसा झोल माल। बट आई, दिस वाज सो फनी, एंड यू कैन ओनली डू दीज थिंग्स व्हेन यू हैव अ पार्टनर इन क्राइम विथ यू, राइट? आपका दोस्त आपके साथ हो, एंड आज भी आई एम श्योर आप दोनों दोस्त मिलती होंगी, ये बात एक बार छिड़ती छिड़ती है पता चला उनको, तो वो कहते नहीं
4: वो उनके हस्बैंड सामने आते हैं, लाइक मैं बोली अब तो बता देंगे, अब तो बहुत टाइम हो गया इस बात को। तो बोली कि अगर बता दिए तो फिर हमारे पास हंसने के लिए रीजन नहीं होगा।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपने भी एयर फ्रायर के बहुत सारे समोसे ऐसे उंगलियां चाट चाट के खाए हुए हैं तो टाइम टू रीथिंक। But that was so amazing. Thank you, Salman. Thank you for sharing this with us and sharing these smiles and laughter with us. Happy Friendship Day.
4: Thank you so much.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: Trending song, number 13.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: ये जिसने भी गाना रिक्रिएट करने का सोचा है भाई, आई डोंट थिंक सो मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगी। राणा जी की तो छोड़ दो, यू शुडंट हैव टच्ड दिस गाना। ओह माय गॉड, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अनट्रैप के साथ यहाँ पर, ऑफ कोर्स यहाँ पे टॉप चार्ट्स चल रहा है, मस्ती टॉप 20 का काउंटडाउन। बट ऑफ कोर्स दिस इज द दोस्ती एडिशन, आज है फ्रेंडशिप डे और ये जो दोस्ती दिवस हम मना रहे हैं, बीच बीच में जो ऐसे वैसे इधर उधर के गाने चलते रहते हैं, जो कि मैं कुछ टॉप 20 के काउंट डाउन से सुनते हुए आ रही हूँ, बड़े 90s के गाने रेणुका ने भी प्ले करने शुरू कर दिए हैं। आई वंडर व्हाई, अब गाना ही कुछ ऐसे है तो क्या ही करा जा सकता है। बट आज दोस्ती से जुड़ा हुआ हर गाना कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल यहाँ पर प्ले किया जाए अलॉन्ग विद द टॉप चार्ट्स। आई होप यू आर एंजॉइंग द सॉन्ग्स, आई होप आपको लग रहा हो कि जो नंबर पे जो गाना है आई थिंक ठीक ही है, नॉट बैड नॉट बैड। बट टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स, क्योंकि गाना ऐसा आने वाला है एंड माय बेस्ट फ्रेंड ऑल द वे हु इज इन इंडिया, शी इज ट्यून्ड इन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई वांट टू विश हर वेरी वेरी, आई वांट टू टेल हर दैट आई थिंक अ वेरी मच पार्ट ऑफ माय एग्जिस्टेंस ओवर हियर इज लाइक इट गोज टू हर। सो आई टेल यू अ वेरी पर्सनल स्टोरी अबाउट मी एंड इट इज नॉट द फनी वंस तो हर कोई ऑफकोर्स यहाँ पर बताएगा, बट इट्स अ वेरी टचिंग एंड इमोशनल थिंग एंड आई रियली चेरिश दैट अबाउट हर फॉर एवर। जब मैं सिंगापुर आई थी यहाँ पर, मेरे पास आई गॉट रेडियो मस्ती में जॉब लेटर, आई केम टू सिंगापुर इवन बिफोर दैट एंड आई हैड दैट पॉइंट ऑफ टाइम नो जॉब and that was the time because due to a lot of other things, my personal life and everything, there was a time when I touched the lowest, I hit the lowest in my life and it was just one, like usually hum log jaise baatein karte hain, catch up karte hain, aur Nivi jo hai meri best friend usne mujhe call kiya and generally I am just talking to her and somehow she felt that I am not okay and you will not believe, in the next 2 days, that girl flew all the way from Kanpur to Singapore and she was here right in front. Jab maine darwaza khol ke usko dekha, my first reaction, I just went and hugged and cried. You know, it was like, maybe unknowingly I asked for it and it just happened. She gauged it and she said that I knew something was not right and I knew that I couldn't stop myself. And here she was, and I was like, dude, I cannot forget that moment. होते हैं ना जो दोस्त हमेशा आपके साथ स्ट्रॉन्ग पिलर बन के आपके सुख में आपके दुख में हमेशा साथ में खड़े रहते हैं। आई ऑलवेज टेल हर दैट आई एम हर अडल्ट एंड ग्रोन किड शी हैज अडॉप्टेड बिकॉज शी ट्रीट्स मी लाइक वन। कुछ भी हो जाए, हम तो ये भी कहते हैं कि अगर हमें किसी को भूत बन के परेशान करना होगा ना, तो मरने के बाद हम दोनों वही दोनों भूतनियां होंगी जो जाके सबसे बदला ले रही होंगी, तुमने हमें बड़ा परेशान किया था, अब हमारी बारी है, लो बेटा। सो वेल, अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे Nivi, एंड ऑल्सो टू ऑल दोज फ्रेंड्स ऑफ योर्स, मेक श्योर दैट यू कॉल देम एंड टेल देम दैट हाउ मच दे मीन देम इन योर लाइफ। सच्ची में कभी कभी सिर्फ एक लाइन यू बताना ही काफी आपको इमोशनल कर देता है। कमिंग अप इज अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी सोनू की टीटू की स्वीटी एंड आई ऑलवेज टेल माय बेस्ट फ्रेंड निवेदिता दैट इसमें जो एक लाइन है कि तेरी एक यारी का सातों जन्म हकदार हूं मैं, तेरा यार हूं मैं, दैट इज जस्ट व्हाट डिस्क्राइब्स माय लव फॉर हर। हैप्पी फ्रेंडशिप डे।
0: इट्स टाइम फॉर मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: It's 6:28 by the studio clock, Radio Masti 24/7 live पर। जी हाँ, चल रहा है Masti Top Charts, but आज अंतरा के साथ, वो भी दोस्ती का edition। But फिलहाल हो चुका है वक्त that our friend Singapore की सड़कों पे जाया जाए और पता किया जाए कि क्या कहता है ट्रैफिक का अपडेट। हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा ऑन ECP towards Changi between Marine Parade and Fort Road। हैवी ट्रैफिक की खबर है ऑन PIE towards Changi between KPE and Thompson Road। और मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन Bartley Road towards Prattle between Upper Serangoon Road and Upper। ये था इस घंटे का ट्रैफिक वाला अपडेट। बट उसी के साथ साथ चलिए बढ़ते हैं, अपने काउंटडाउन को भी साथ साथ में आगे बढ़ाते हैं। नंबर 11 और नंबर 10 पे ये जो दो गाना आने वाले हैं, ठीक है, एक है मैसेकर फ्रॉम द मूवी अल्फा। देखिए, अल्फा मूवी का तो जो हुआ सो हुआ, ठीक है, एक इन्होंने गाना निकाल दिया एंड I still do not understand why, how, where, but top charts करते हुए मैंने एक चीज समझ ली है कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, जो गाना है उसको अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ऊपर नीचे करने का एंड प्लेस कर देने का। खालास। नंबर 10 पे जो है, इट इज इश्क कमीना, अनदर रिक्रिएटेड वर्जन ऑफ द गॉर्जियस ऐश्वर्या राय वाला। आपको ओरिजिनल याद है इश्क कमीना, इश्क कमीना, साथ में शाहरुख खान थे उसमें हमारे, क्या लगी थी ऐश्वर्या, एंड ऑफकोर्स शाहरुख खान तो हमेशा ही अच्छे थे। सो वेल, दिस इज 2.0 वर्जन अगेन रिक्रिएटेड, क्योंकि बचा नहीं है ना हमारे पास कुछ, तो ये दोनों गाने सुन के वापस आऊं। एंड यस, आई विल टेल यू क्या भूतिया प्रैंक खेला था मैंने रेणुका पर।
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 11।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh me raho.
3: Bina flight ticket khareede, duniya ka chakkar lagwayega kaun? Paparazzi se bhi tez gossips aapko laakar dega kaun? Kya baat hai? Aap to kaafi smart nikle. To suniye, saalon se ek tak Singapore tak aapko update rakhne wali aapki RJ Nupur ko Musti Mornings par. Tuesday, Wednesday and Thursday ko only on Radio Musti 24/7 live. ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
4: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो।
5: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 10।
6: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: इश्क का पता नहीं साहब, दोस्ती तो अक्सर हम लोग कहते हैं कि हर एक दोस्त ना ना ना ना ना नहीं, प्यार वाला जो होता है ना कि यार तू तो बड़ा निकल गया. या वी डू से दैट, राइट? डोंट यू से दैट टू योर फ्रेंड्स? कम ऑन. हो सकता है यार. देखो, मुझे लगता है कि हर किसी की दोस्ती अपनी अपनी तरीके की होती है. अपने तरीके का वाइब जो है ना, आप अपने दोस्त के साथ सेट करते हो, एंड दैट इज द मैजिक ऑफ अ फ्रेंडशिप. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, यस मस्ती टॉप चार्ट्स, बट दिस इज द दोस्ती एडिशन. भाई काउंटडाउन के गाने जो है वो चलते हुए जा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ चल रही है दोस्तियों की बातें. एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट प्रैंक वाली दोस्ती जो है रेणुका के साथ कैसे हुई. तो ये बात तब की है जब मैंने बहुत टाइम नहीं हुआ है. हम लोग तो मीडिया कॉर्प के स्टूडियो में किया करते थे शोज, एंड हमारा वो वाला स्टूडियो कुछ ऐसा था लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप घुसते थे एक तो वो एक चढ़ाई पे जाकर, फिर तवड़ा मीडिया कॉर्प का पुराना वाला ऑफिस जो है, अब तो नया वाला और भी शानदार हो गया है, बट पुराना वाला ऑफिस हिल पे जाकर एक चढ़ाई करने के बाद हुआ करता था. एंड हमारा स्टूडियो जो है वो एकदम डंजन के जैसे बेसमेंट में बहुत बहुत डीप में जाकर था, और उसके जो स्टूडियो का दरवाजा एंड एवरीथिंग दे वाज रियली रियली थिक, बिकॉज यूजुअली ये जो है ऐसा होता है रेडियो के सेटअप में साउंड प्रूफिंग के लिए, इस तरह के हैवी डोर्स और ये साउंड प्रूफिंग की जाती है. सो रेणुका करती थी संडे वाला शो, ठीक है. मैं नई मैंने ज्वाइन किया था, नया मैंने 5 से 8 शुरू किया था शोज. सो मुझे ऐसा लगता था, मुझे ऐसी फीलिंग आई कि देखो आप ना जहां पे जिस नदी में रहते हो तो वहां का जो राजा होता है या रानी होती है उसका देखा देखी जो है उससे सीखने के लिए बहुत कुछ होता है. तो मैंने कहा यार संडे को ना अगर मैं मेरे पास वक्त है तो व्हाई डोंट आई टेक आउट टाइम एंड गो एंड वॉच हर डू द शो, बिकॉज शी हैज बीन डूइंग दिस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम सिंगापुर में. देयर विल बी अ लॉट दैट आई कैन टेक नोट्स ऑन एंड टेक यू नो कि किस तरह से किया जाता है सिंगापुर के ऑडियंस को, कैसे जीता जाए, क्या है इसका कंकॉक्शन, ये सोच के मैं निकली. मैं जब MRT में बैठी हुई थी, सो आई कॉल्ड रेणुका. रेणुका इज ऑन द शो, ठीक है, उनका लिंक आने वाला है, एंड आई एम टॉकिंग टू हर जनरली अबाउट द वर्क एंड एवरीथिंग. एंड उनको ये पता है कि आज कौन ही आएगा, वो इतना, और वहां पे ना मीडिया कॉर्प में कोई भी वो नहीं होता है, आसपास नहीं होता है. अक्सर हम लोग ये जोक किया करते थे कि अगर कभी कोई हमें मतलब भूत आ भी गया तो बस माइक पे चलाने के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी यहां नहीं पहुंच सकता है, ये इतना ज्यादा डीप में था. तो अब मैं पहुंची, रेणुका को पता नहीं है आई, तो मैंने बाहर, सो बाहर का एक सेक्शन है, उसके बाद अंदर स्टूडियो का एक सेक्शन है. मैंने बाहर वाला दरवाजा हल्के से खोला, पतले से गैप से अंदर घुस गई, ठीक है. अब मैं देख रही हूं रेणुका कर रही है शो ऑन एयर, उनका जा रहा है लिंक. मैंने पहले बाहर की बत्ती ऑफ की क्योंकि उसका स्विच बाहर ही था. रेणुका को एक बार तो उतना पता नहीं चला, बट फिर मैंने दूसरे स्टूडियो की जो बैकअप स्टूडियो था वहां की लाइट ऑफ की. देन शी वेंट लाइक कि कुछ तो है, कुछ गड़बड़ है, ये कैसे हो गया. एंड धीरे धीरे करते हुए अंदर स्टूडियो वाली जो बत्ती है जिसका स्विच जिस स्टूडियो के बाहर था, स्टूडियो का गेट बंद है, मैंने वो भी ऑफ कर दिया. एंड दैट इज द मोमेंट शी रियली रियली गॉट स्केयर्ड कि पक्का कोई भूत कपक, लाइक कुछ तो गड़बड़ है. By the time she got out to see, मैं दूसरे बैकअप वाले स्टूडियो में जाकर छुप गई. She came out and she, you know, main studio का दरवाजा खोला, बाहर वाला खोला, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है बत्ती कहाँ गई. फिर उसने आके अंदर स्विच से बत्ती ऑन की, मैं अंदर छुपी हुई हूँ. And then the moment she started moving towards the main studio, मैंने उनको ठप्पा किया. ओ माई गॉड, यू शुड हैव सीन द फेस. आई कैन नॉट फॉरगेट एवर, आई एम श्योर शी कैन नॉट फॉरगेट एवर. मेरे और रेणुका के बीच का ये सबसे ज्यादा खौफनाक मेमोरेबल मोमेंट था. एंड शी वॉज लाइक ओ माई गॉड. या हमारी दोस्ती आई थिंक उसी दिन पक्की हो गई थी. या हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू हर. एंड या आई थिंक लेट्स प्ले शोले का ये गाना. या ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर, बट ना ना दोस्त तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे. हैप्पी फ्रेंडशिप डे.
0: बॉलीवुड फ्लैशबैक.

0: इट्स द फ्रेंडशिप डे स्पेशल मस्ती टॉप चार्ट अंतरा के साथ यहाँ पर चल रहा है. कमिंग अप फॉर यू नाउ ऑन द टॉप चार्ट इज नंबर 9 और नंबर 8. मैं यहाँ पे बीच में इसमें लिया आगे क्योंकि मेरा अगेन सवाल है आप सभी से. भाई चटनी नामक, आई नो इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग, ठीक है. जब मैंने दबंग में सुना था आई वॉज लाइक टोटली फॉर इट. आई हैव इवन डांस्ड, मेरे कजन के संगीत पे इस गाने पे मैंने और उसने मिलकर ये डांस किया था. कब लर बिन चटनी कैसे बनी, वेरी नाइस, सब कुछ सही लगा. लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि चटनी नंबर 3 पे इन दिस काउंटडाउन, मतलब ये आपने होने कैसे दिया, ये मेरा सवाल है. सो मैंने उठा के डाल दिया है चटनी को फ्रॉम द मूवी धमाल 4 नंबर 9 पे. एंड हाउ डिड यू लेट गहरा हुआ यू नो कम एट नंबर 9? आई मीन नो. सो अब गहरा हुआ मैंने कहाँ डाला है वो जानने के लिए आपको बिल्कुल मेरे साथ बने रहना पड़ेगा. बट चटनी इज एट नंबर 9 एट ऊंचा लंबा कद कीप्स इट्स पोजिशन कहाँ पर, नंबर 8 पर. गुड इवनिंग.
1: Trending song number 9.

मीडिया और कंगना रनौत के बीच में चल रही है अलग लेवल की दोस्ती और प्यार। उसके बारे में अगर हमने नहीं किया बात मेरे यार, तो कैसा होगा हमारा कंप्लीट आज का त्योहार। हो वाह वाह वाह, क्रिएटिविटी की दाद देना चाहेंगे आप सभी मुझे। बट वेल, मस्ती टॉप चार्ट्स में ये घंटा जो है हम लोग रैप अप करते हैं इस प्यारे से गाने के साथ। एंड भाई, दिस मूवी एंड दिस गाना एंड एवरीथिंग अबाउट दिस मूवी वॉज सो दोस्ती कोडेड। आई मीन ऐसा हो ही नहीं सकता है दैट यू टॉक अबाउट फ्रेंड्स एंड यू कैन नॉट यू नो टॉक अबाउट दिस मूवी व्हिच इज कॉल्ड जो जीता वही सिकंदर। हाय हाय, क्या क्या कुछ नहीं सिखा के गया ये वाला मूवी। आई नो मुझे एकदम 90s के बोर्ड बजाने में एकदम कोई भी 2 सेकंड नहीं लगते मुझे, बट देन आई गॉट दिस गाना, आई गॉट दिस मौका, सो व्हाई नॉट, लेट्स गो। जितना भी टाइम बचा है उसी में इन्वेस्ट करते हैं। गुड इवनिंग।

0: हमारे बड़े बूढ़े इन द इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री कहकर गए हैं, राजकुमार साहब अरे जाने जिनके घर शीशों के होते हैं वो उन पे दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते हैं। ओहो, व्हाई एम आई रिमेम्बरिंग हिम, बिकॉज दिस डायलॉग सूट्स कंगना रनौत लाइक सो वेरी मच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर 7 बजे के उस पार पहुंच चुके हैं, 2 घंटे निकल गए। बताओ पता चला नहीं, क्योंकि मस्ती टॉप चार्ट्स चल रहा है, वो भी आज अंतरा के साथ, वो भी आज फ्रेंडशिप डे स्पेशल। क्या एक से एक बढ़िया, बीच में जो है दोस्ती ब्रीदर वाले गाने चल रहे हैं, मजा ही आ रहा है। आपको बाहर आ रहा है, मुझे यहाँ पे स्टूडियो में बैठे बैठे मजा आ रहा है। बाकी जो काउंटडाउन के गाने हैं वो मैंने थोड़े बहुत नहीं, काफी सारे ऊपर नीचे कर रखे हैं। अब वो तो दैट इज फॉर माई डियर फ्रेंड रेणुका टू डील विद नेक्स्ट वीक में। और आई एम श्योर मैंने ये जो आज चेंजेस किए हैं, एवरीबडी इज काइंड ऑफ अग्रींग विद मी, क्योंकि मुझे मैसेजेस तो कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। कमिंग बैक टू कंगना रनौत, सो हुआ कुछ ऐसा कि अब ये बात नीट और ये एग्जाम्स और किसी के राइट्स इसकी रही नहीं, अब हम सारा फोकस कहीं और पे देंगे। जहां एंटर किया सेलिब्रिटी ने, एंटरटेनमेंट हमको फुल ऑन मिलेगा, एंड दैट टू नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंगना रनौत द कंट्रोवर्सी क्वीन। भाई इन्होंने आकर ऑफ कोर्स अपनी बहुत सारी अच्छी हिंदी जो इन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है, कहा कि काफी सारा जेंजी और उनके प्रोटेस्ट को लेकर काफी सारी ऐसी ऐसी वर्ड्स यूज करते हुए इतना कुछ बोल गए कि वो भूल ही गए कि उन्होंने भी काफी अपशब्द यूज किया हुआ है, जो आप सभी को पता है। नाउ द जेन जी स्ट्राइक्स, ऑफ कोर्स द मीडिया इज ऑफ कोर्स बिल्कुल वो भी स्ट्राइक कर रही हैं, और चुन चुन के उनकी पुरानी वीडियोस पहले के टाइम की, जब वो काफी काफी एंटरटेनिंग हुआ करती थी, उनके पार्टीज के पहले पिक्चर्स एंड वीडियोस, उनके पुराने इंटरव्यूज वेयर शी इज एडमिटिंग दैट शी वाज इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स। कोई यू नो ये कॉकरोच जनता पार्टी का एक बंदा कह रहा है कि उनको मुझसे ये प्रॉब्लम है शायद क्योंकि मेरी शक्ल ऋतिक रोशन से मिलती है, आई थिंक दैट्स व्हाई शी इज नॉट लाइक लाइक दे आर रियली मेकिंग फन ऑफ हर। एंड देयर इज दिस वन ऑडियो आई गॉट एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, लाइक
1: Gen Z गटर छाप जनरेशन है, कई Gen Z लड़कियां तो बहुत बदसूरत है, ये एक ढंग की होम मेकर भी नहीं बन सकती। बहन तो तुम कौन सा घर बसाकर बैठी हो जो धरती के संपर्क में कभी आया ही नहीं, प्ले स्कूल के बच्चे भी इस तरह से नहीं लड़ते, और तुम तो नानी बनने की उम्र में पहुंचने वाली हो और बच्चों से ही भिड़ रही हो, पूरी जनरेशन को ही टारगेट कर दिया आपने, तो देखो थोड़ा पर्सनल तो होना होगा। बर्नॉल रख लो, थोड़ा आउच जरूर होगा। कंगना दीदी डॉक्टर बनने चली थी लेकिन केमिस्ट्री एग्जाम में लुढ़क गई, और फिर ऑडेसिटी इतनी की कहती है Gen Z पढ़ाई में अच्छी नहीं। कंगना दीदी को Gen Z के बॉडी काउंट से दिक्कत है क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी में एक बार भी किसी लड़के की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। शराफत और इंटेलिजेंस की नदियां बहती है कंगना दीदी के चारों ओर। Gen Z गटर छाप जनरेशन क्योंकि वो ड्रग्स लेती है। दीदी मेरी,
2: जैसे मैं घर से भागी 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी।
1: तो शब्दों का ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक बार पास्ट की नली में झांक कर तो देख लो। बैंड तभी बजाओ अगर इतिहास साफ हो, लेकिन अगर इतिहास मिलता जुलता हो तो Gen Z के इतना क्यों खिलाफ हो बेबी डॉल।
0: It was so on point. I could not resist myself without playing it. And I was like, oh my God. I don't have to say anything more about it. But let's get back to the countdown. Yes, this is the alag level of dosti going on between Kangana Ranaut and the Gen Z now. Well, aisi bhi dostiyan kai baar humne dekhi hui hai. Aur itihas likha hai aisi dostiyon ne. Likha hi ja raha hai, in fact. Number 7 aur number jo hai hamara 6. Maine kar diya hai dono ko swap. Kyunki mujhe लगा कि भाई ये गुलाबी साड़ी जो है इट डिजर्व्स नंबर 6, थोड़ा और नीचे हो सकता है बिकॉज आई लाइक इट बेटर देन द धक धक वन व्हिच इज ओके, आई लव द ओरिजिनल वन बट दिस वन वुड आल्सो डू। लेट्स गो।
3: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 7।

0: आई टेल यू भाई, मार्केट में गानों की कमती है दोस्त, सब रिक्रिएटेड गाने हैं। इनफैक्ट दिस वन जो अभी अभी आप सुन रहे थे नंबर 6 पर, दैट इज सारी गुलाबी सारी, या ये भी रिक्रिएटेड गाना है। सो आप क्या ही कर सकते हैं, इट इज व्हाट इट इज माय डियर फ्रेंड्स। बट उसी के साथ साथ एज वी आर टॉकिंग मस्ती टॉप चार्ट्स आप सुन रहे हैं, मैं हूँ अंतरा निकिता। आज मस्ती टॉप चार्ट्स जो है वो अंतरा लेकर यहाँ से जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा आई थिंक फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट आज रेणुका कर रहे हैं। रेणुका ने मेरे को गिफ्ट में आज ऑनर्स दिया मस्ती टॉप चार्ट्स करने का, कि नहीं आज तुम करोगी, ये मेरा मेरा तोहफा है दोस्ती दिवस का तुमको, एंड हियर आई एम। सो यस, आई नो यू आर वरीड अबाउट कि गहरा हुआ, मतलब क्या तुमने हटा ही दिया, मतलब क्या किया तुमने उसके साथ? मैंने उसके साथ किया जस्टिस, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड, क्योंकि आई कुड नॉट सी बेचारा मेरा इतना अच्छा सा गाना नंबर 9 पे क्या कर रहा था, तो मैंने उसकी जगह बदल दी। अब मैंने उसको कहां पे जाके रखा है, आई एम श्योर निकिता जब तुम सुनोगी तो तुम्हें भी काफी उस बात को लेकर खुशी महसूस होगी, जैसा कि दोस्त मुझे हो रहा है खुशी महसूस फिलहाल ये शो करते हुए। बट एट द सेम टाइम देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ दीज टू टीममेट्स, okay, who are friends, and they both actually got एक का गोल्ड दूसरे का ब्रॉन्ज मेडल इन द ग्लासगो का जो चल रहा है वहां पे पैरालंपिक्स। क्या है ये कहानी, विच इज ब्यूटिफुल, व्हेन आई टेल यू यू विल से यार ये तो बहुत ही कमाल की बात हो गई। कुछ कहानियां कुछ दोस्तियां इतनी ज्यादा इंस्पिरेशनल होती है ना कि मैं क्या ही बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक दोस्ती वाला गाना जो बीच बीच में आना चाहिए वो प्ले करूंगी। इट्स फ्रॉम द मूवी पति पत्नी और वो, एंड रोचक कोहली एंड अरिजीत सिंह, दे बोथ डिसाइडेड टू जस्ट ब्यूटिफाई इट। इट्स कॉल्ड तू ही यार मेरा।
1: इट्स टाइम फॉर मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर,
2: सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: Oh my god, I'm so excited to introduce the gana number 5 for you on the Masti Top Charts on Radio Masti 24/7 Live. Main hoon Antra yahan par aapke saath. And yes, aaj ka ye din jo hai, aaj ke in fact ye shaam aap mere saath jo hai yahan pe spend kar rahe hain. It's Friendship Day and there are so many types of friendships which we are talking about, by the way. Today, to humne jo hai kai sare hamare pyare pyare listeners se pucha tha ki bhai aapke liye kya, like what does it mean friendship day पे आप क्या याद करते हो सबसे ज्यादा. So भाई हमारी एक काफी पुरानी लिस्नर है, उनका नाम है पूजा प्रजापति and she is really adorable. I know her from the time जब उसकी बेटी I will sound old but it is the fact, okay. So उनकी बेटी जो है काफी छोटी थी and she used to tell me that Antra it's you and my daughter have got this, बहुत ही ज्यादा तुम दोनों similar एक दूसरे के जैसे दिखते हो and I felt like oh my god seriously that is so nice, right? So yes, I asked her ki bhai what do you feel about this friendship day and what do you want to tell your friends about it, and this is what she said.
3: Hi, this is Pooja and I want to share my memory that during COVID time, especially when we were not connected to each other, so it was very hard to meet up. So humne plan kiya ki hum Zoom par milenge and almost two या three times in a week we meet on Zoom and हम लोग चाय पीते थे और हम शरीर खेलते थे और हम मूवी कैसे कराने के लिए डांस करते थे एक दूसरे के साथ, जो कि बहुत फनी मोमेंट था हम लोगों के लिए. और हमें पता ही नहीं चला कि इतना डिफिकल्ट टाइम इतनी आसानी से एक साथ हम लोगों ने गुजारा एंड इट वॉज अ वंडरफुल मोमेंट एंड एक दूसरे को सपोर्ट किया इस तरह से एंड I got really a good friends. So thank you all of you and thanks friends who are with me, who will be with me and who were with me. So thank you and happy friendship day to all. And thank you Musti Media Network for this.
2: How sweet यार, सच्ची में यार कोविड टाइम्स ने ना दोस्तियों की भी टेस्टिंग टाइम्स लेकर सामने खड़ा कर दिया. हाउ मतलब जिनके घर हम जाके कितना टाइम दोस्तों के साथ स्पेंड किया करते थे, अचानक से वो सारे के सारे स्क्रीन पे आ गए. हम जूम कॉल्स कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं. मैं तो लूडो खेला करती थी, फॉर सम रीजन लूडो बिकेम माई ऑब्सेशन कोविड के टाइम पर फॉर ऑल ऑफ अस. हर रोज रात को ऑफिस खत्म करने के बाद आई यूज टू लुक फॉरवर्ड कि अरे वाह अब तो टाइम विद माई फ्रेंड्स, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही वीडियो कॉल लगा के एकदम. आई यूज टू बी सो एक्साइटेड अबाउट इट, बट क्या करें कोविड टाइम निकल गया और वो टाइम भी निकल गया. आई थिंक एवरी टाइम हैज इट्स ओन खासियत एंड एवरी फ्रेंडशिप ऑल्सो हैज इट्स ओन खासियत. एंड अगला नंबर 5 पे आज मस्ती टॉप चार्ट्स पे गाना जो किक आउट कर दिया था हमारी रेणुका ने, आई मेड श्योर आई हैड टू ब्रिंग इट बैक. एंड गेस व्हाट, डालना तो मुझे इसको नंबर 1 पे चाहिए था लेकिन आज मैंने इसको डाला है नंबर 5 पे. दिस इज रंग दिलाल ओए ओए धुरंधर के साउंड ट्रैक से, वन ऑफ माई फेवरेट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
0: Trending song number 5.
4: Oh, yeah.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
3: It's time for
4: Masti Song of the Hour.
5: Song of the Hour.

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: या क्या गाने लिखे जाते थे. आई मीन जस्ट आप अभी ये गाना सुन रहे थे, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी. कभी आपने तसल्ली से बैठ कर ना पूरा गाना आराम से सुनना, जहां पे आपको एक एक इसका जो लफ्ज है वो आपने सुना हो, समझा हो, महसूस किया हो. सच ब्यूटिफुल. आई क्रेव फॉर लिरिक्स लाइक दीज नाउ डेज. वट वी गेट इज वट we all are getting on Musty top charts. Yeah, ab kya kare, but this is it is what it is, right? Radio Musty 24/7 live. Yes, this is Musty top charts. Main hu Antra yahan par aapke sath, and it's a dosti special dosti edition which is going on. And hamari dosti ka ek aur usool hota hai my dear friends, ki aap kuch dekho to aap hame batao, hum kuch dekhe acha sa interesting to hum aapko bataye. So yes, I watched quite a few. So I usually go and watch very different languages, and मैं काफी कोरियन ड्रामास भी देखती हूँ, बिकॉज उसमें मुझे काफी सारी वैरायटी देखने को मिल जाती है, द चीजी वंस, द थ्रिलर वंस एंड एवरीथिंग एल्स. बट यू नो हिंदी में भी कंटेंट आ रहा है, एंड इट इज नॉट बैड. जितना कि कभी कभी ऐसा लगता है कि लग तो रहा था बट हुआ कुछ नहीं. सो आई वॉच्ड प्रीतम एंड पेड्रो, आई वॉच्ड लेटेस्ट में मुसाफिर कैफे, एंड देन राइट नाउ आई एम करंटली वॉचिंग दिस रियली हिलेरियस वन. ओके, इट्स कॉल्ड आदर्श बाल विद्यालय. के मेनन है इस वाले सीरीज में. यू नो एंड ऑल थ्री ऑफ देम आर कंप्लीटली थ्री डिफरेंट जॉनर्स. ओके, माय दोस्ती विद दिस ऑनलाइन कॉन्टेंट इट्स वेरी वेरी गहरा. इट कीप्स मी सेन, इट कीप्स मी. मैं जब मेरा काम खत्म होता है और मैं जब ये सारी चीजें देखती हूँ तो मैं पूरा इंडल्ज होके देखती हूँ. इट जस्ट कीप्स मी विद दैट एंड डिस्ट्रैक्टेड एंड गिव्स मी दैट ब्रीदिंग स्पेस. सो वेल, जहां पे एक तरफ प्रीतम एंड पेड्रो था, विच इज लाइक अ कॉप एंड थ्रिलर एंड साइबर क्राइम एंड ऑल दोज थिंग्स, विच इज अ गुड वन. ओके, वहीं पे मुसाफिर कैफे वॉज लाइक अ स्लो बर्न. लाइक अगर आपको कुछ स्लो एंड बर्निंग एंड यू नो अच्छा फील गुड पहाड़ों पर कैफे, यू वॉन्ट समथिंग लाइक दैट, देन दैट्स फॉर यू. बट दिस वन इज लाइक ओ माई गॉड हिलेरियस. सो वंस आई फिनिश वॉचिंग दैट आई एम गोना रिव्यू इट एज वेल. बट मुझे लगा कि मुझे ये जो है दोस्ती के खातिर शेयर करना जरूर चाहिए था. वेल, वापस आते हैं टॉप चार्ट्स में. बाय द वे, सिर्फ दोस्ती मैं नहीं निभाऊंगी, आप भी मुझे बताओगे कि व्हाट आर यू वाचिंग द लेटेस्ट एंड क्या है, कौन सा है जो आपने देखा है या देखना चाहते हो. इज देयर एनीथिंग व्हिच यू वांट मी टू रिव्यू, प्लीज फील फ्री टू टेल मी, आई विल टेक द बुलेट फॉर यू. आई डू अ शो कॉल्ड शो नहीं, छोटा छोटा एपिसोड आता है मस्ती टॉकीज, वेयर आई रिव्यू थिंग्स फॉर यू. बट वेल, कमिंग बैक नंबर चार पर, मैं वापस आऊंगा. ना ना ना, ये गाना ही, यह है मूवी का नाम, इम्तियाज अली सर की मूवी, और इसमें एक बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा गाना कॉल्ड हाय मस्कारा. सो दैट्स व्हाट नंबर चार. और नंबर तीन पे, भाई मैंने चटनी को हटा दिया यहां से, आई पुट गहरा हुआ जो नंबर नौ पे था, एंड यस नंबर तीन पे इट इज द रिटर्न एंड विक्ट्री ऑफ गहरा हुआ नंबर तीन पे. जाइए ये गाना सुनकर वापस आइए, एंड आई विल बी राइट बैक ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
0: Trending song number 4.

0: This गाना मैन, लाइक सीरियसली, आई थिंक वाई डू वी प्ले धुरंधर मूवी के गाने इतने सारे? दिस इज अ वेरी बिग रीजन. वेन यू गिव अस गुड गाना, वी वॉन्ट टू हैंग ऑन एंड क्लिंग ऑन टाइट टू इट. वाई? बिकॉज बाकी गानों में से तो कुछ आ नहीं रहा है, तो जो हमें थोड़ा बहुत अच्छा लगा है, सो वी वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू इट. वॉट टू डू, वॉट टू डू. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के यहाँ पर साथ मस्ती टॉप 20 चल रहा है. यस, इट्स थर्सडे इवनिंग. नहीं नहीं नहीं, और कोई दिन नहीं है, आप सही दिन पर ही ट्यून इन कर चुके हो. दोस्ती दिवस हम लोग यहाँ पर बिल्कुल मनाते हुए चल रहे हैं. मेरी दोस्त रेणुका ने मुझे ये जिम्मेवारी जो है वो दे रखी है. एंड अमंगस्ट ऑल द ब्यूटिफुल मैसेजेस, देयर इज वन मोर मैसेज व्हिच आई वुड लाइक टू प्ले ओवर हियर. हमारे भोपाल से, ऑल द वे फ्रॉम भोपाल, बड़े क्यूट से हमारे लिसनर्स हैं. दो छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, और मेरे तो फेवरेट है, कियाशा और कियान उनका नाम है, बट ललिता इज द मेन वन. ओके, तो भाई फ्रेंडशिप डे का मौका था एंड ललिता एंड कियाशा ने मिलकर सोचा कि भाई हमने भी कुछ कहना है. सो हियर्स व्हाट दे सेड ऑन दोस्ती दिवस.
1: मतलब मेरे लिए शेयरिंग केयरिंग, बहुत सारी मस्ती करना, बातें करना और बहुत सारे गेम्स खेलना एक साथ. आपके लिए क्या है?
2: मेरे लिए फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ खूब सारा घूमना, अपने दिल की बातें करना, जो भी मन में आए बोलना, बिना किसी पॉज के अपने फ्रेंड्स के सामने कुछ भी बोल दो, वही फ्रेंडशिप होती है. क्या हैप्पी फ्रेंडशिप डे.
0: I love how she says, Kiyasha, samjhi beta. So, isi baat pe bhai ek aur dosti wala gana aaj ke din mein between the top charts, followed by number 2 par bana hua hai abhi bandhu 2 ka cocktail. But number 1 pe kya hoga? Raaz ka fardafash karenge fatafat se aane ke baad. Theek hai, stay tuned.
3: It's time for Masti Song of the Hour.
4: Song of the Hour.

0: another beautiful song which goes out. Friendship Day pe absolutely perfect fit. Radio Masti 24/7 live. Yes, वो घड़ी आ चुकी है दोस्तों जब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा. मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है. मैं अंतरा बाय द वे आपके साथ मस्ती टॉप चार्ट्स. आज जो यारी एडिशन, दोस्ती एडिशन चला है, वो आपने मेरे साथ ये वक्त गुजारा, उसके लिए थैंक यू सो मच. ऑफकोर्स इतना सारा प्यार उड़ेलने के लिए भी थैंक यू सो मच. बट बिफोर आई गो, मुझे ऐसा लगा कि इस हफ्ते मैं घर गई ही नहीं हूं. मतलब मैं दो बार आकर, बट देन देर आर वीक्स लाइक दैट, राइट. सो वेल, इसी बात के साथ अब आपसे वापस से मुलाकात होगी. मैं कह रही हूँ रुखसार, देखो मंडे को जो है मैं सुबह आई, मैं शाम को मुझे फील आया कि वही वाला कि अगले दिन ट्यूसडे सुबह आना है. फिर मैं ट्यूसडे आई, फिर मैं शाम को जो है डियर मस्ती दिल से आई, फिर मैं वेंसडे शाम को आई, फिर मैं थर्सडे सुबह आई, फिर मैं थर्सडे शाम को अभी यहाँ पे हूँ. मुझे वापस कल सुबह आना है मस्ती मैडनेस पे. और अगर कल, अगर मतलब सबसे पहले तो मैं ना थोड़ा लेट ही आऊंगी, ठीक है. मैंने मेक श्योर करना है कि रेणुका ने पहले आना है, एंटर मारना है, ठीक है, वरना अगला प्रैंक तैयार किया जाए. फिलहाल कूच किया जाए हमारे नंबर एक गाने की तरफ. मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, बिकॉज या वी कैन नॉट डू दिस. एंड दिस गाना आई एक्चुअली लाइक्ड, ओके. एंड एक बार में मुझे पसंद नहीं आया था, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इट काइंड ऑफ ग्रो अप ऑन मी एंड आई केप्ट ऑन हमिंग इट अनोइंगली. दैट्स हाउ आई नो दैट आई हैव दिस लाइकिंग टुवर्ड्स दिस. मामा इसके आगे नहीं बताऊंगी. गाना आप सुनो, छोड़ के जा रही हूँ कल सुबह पागलपन वाले भरे शो मस्ती मैनस रेणुका अंतरा के साथ. जुड़ना मत भूलना. फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे दोस्तों. हैप्पी फ्रेंडशिप डे.
1: Trending song. Check it out. Number 1.

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

हेलो हाय वेलकम नमस्ते रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सभी का स्वागत है डियर मस्ती दिल से हमारे इस शो के एक नए एपिसोड पर। पता है आजकल एक वर्ड बहुत सुनने को मिलता है, इट्स कॉल्ड बीइंग ओवरवेल्म्ड। और मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग एक्चुअली ओवरवेल्म्ड होते हैं, बस हमें उसका नाम नहीं पता होता। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता है और बिना वजह इरिटेशन हो जाती है, या किसी दिन आपको ये लगता है कि आज किसी से बात करने का मन नहीं है, या फिर आप एकदम चुप हो जाते हैं और खुद भी नहीं समझ पाते कि हुआ क्या है। हम सोचते हैं शायद मेरा मूड खराब है, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ या रहा हूँ, लेकिन कई बार प्रॉब्लम मूड नहीं होता, प्रॉब्लम होती है हमारे दिमाग और दिल ने एक साथ बहुत कुछ उठा रखा होता है। ऑफिस, घर, पेरेंट्स, किड्स, रिलेशनशिप, सोशलाइजिंग, हेल्थ, फ्यूचर। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, कभी कभी हमें ये भी रियलाइज नहीं होता कि हम इतने ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो रखे हैं, जब तक हम किसी पर अननेसेसरली गुस्सा ना कर दे, या बिना बात के रो ना दे, या एक दिन बस चुपचाप बैठ कर सोचने ना लग जाए मैं ठीक हूं ना। और शायद सबसे पहला स्टेप सोल्यूशन ढूंढना नहीं होता है, सबसे पहला स्टेप ये होता है खुद से कहना हाँ आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड, एक्सेप्टेंस। एंड बिलीव मी, अपनी फीलिंग को नाम देना ही कभी कभी उसे हल्का कर देता है। और शायद इसीलिए हमने डियर मस्ती दिल से को क्रिएट किया, एक ऐसा शो जहां आपको परफेक्ट बनना नहीं है, स्ट्रॉन्ग दिखना नहीं है, सबके

0: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूं यहां पर अंतरा आपके साथ। चलिए हमारी आज की सबसे पहली चिट्ठी की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, डियर मस्ती, मेरी एक फ्रेंड ने मेरे मुंह पे झूठ बोला और मैंने उसकी बात मान ली। बाद में मुझे सच का पता चला, लेकिन जब वही बात दोबारा उठी तब भी उसने सच एक्सेप्ट करने के बजाय फिर से मुझसे झूठ बोला। सबसे अजीब बात यह है कि पूरी सिचुएशन मेरे बारे में ही थी। व्यूमर भी उसी ने फैलाया और अब लोगों के सामने वो ऐसे बिहेव करती है जैसे वो सबसे बड़ी मेरी वेलविशर और सेवियर है। मैं समझ नहीं पा रही ऐसे लोगों से डील कैसे किया जाए।
1: ओके,
0: डियर लिस्नर, कभी नोटिस किया है, झूठ सिर्फ इसलिए हर्ट नहीं करता क्योंकि वो झूठ होता है, झूठ इसलिए हर्ट करता है क्योंकि वो ट्रस्ट के सामने बोला गया। हाँ, राइट। और जब वो किसी अपने से आए तो और भी ज्यादा हर्ट होता है। मुझे लगता है इस लेटर में प्रॉब्लम र्यूमर से भी बड़ी है। प्रॉब्लम ये है कि जिस इंसान को आप सच बोलने लायक समझते थे उसने आपको सच के लायक समझा ही नहीं, और उसके बाद जब वही इंसान मास्क पहन के आपका सपोर्टर बनने की एक्टिंग करे तो कन्फ्यूजन और भी बढ़ जाती है। आप सोचने लगते हो कि क्या मैं ही ओवर थिंक कर रहा हूँ या रही हूँ, क्या मुझे ही कन्फ्रंट करना चाहिए या बस दूर हो जाना चाहिए। और एक और इमोशन भी आता है जो बहुत कम लोग एडमिट करते हैं, बिट्रेल के बाद इंसान को दूसरों से कम खुद पे बहुत गुस्सा आता है कि मैंने इतना ट्रस्ट क्यों किया, राइट? मैंने क्यों नहीं पहचाना। एंड बिलीव मी, ये फीलिंग बहुत नेचुरल है, लेकिन हर झूठ का जवाब उसी वक्त देना जरूरी हो ऐसा भी नहीं होता। तो अगर मैं आपकी जगह होती, क्या मैं उसे कन्फ्रंट करती या क्या हर झूठ को एक्सपोज कर देती? या कभी कभी चुपचाप किसी को अपनी लाइफ से बाहर कर देना ही काफी होता है। लेट मी गिव इट अ थॉट। मैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद आती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैं इस सिचुएशन को किस हिसाब से और किस नजरिए से देखने की कोशिश कर रही हूँ। यह डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। स्टे ट्यून्ड।

0: लेकर आऊंगा, मैं डंडा लेकर आऊंगा।
1: मैं
0: रस्सी से खिंचवाऊंगा।

झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो मैं तेरी सौतन लाऊंगा तुम देख रहियो, मैं तेरी सौतन लाऊंगा तुम देखते रहियो।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

डियर मस्ती दिल से, जी हाँ उसी का एक ब्रांड न्यू एपिसोड आप सुन रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूँ यहाँ पर अंतरा आपके साथ। एंड अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमारे एक डियर लिसनर ने जो है उनका चिट्ठी मैंने पढ़ा और उन्होंने कहा कि उनकी एक फ्रेंड ने उनके मुंह पर झूठ बोला, बाद में उन्हें सच का पता चल गया, लेकिन जब बात दोबारा उठी तब भी उस फ्रेंड ने झूठ बोलना नहीं छोड़ा। सबसे दुख की बात उनको ये लगी कि ये र्यूमर भी उन्हीं उसी दोस्त का फैलाया हुआ था और आज वही लोगों के सामने उनकी वेल विशर और सेवियर बनके घूम रही है। उनका सवाल था ऐसे लोगों से डील कैसे किया जाए, क्या मुझे कन्फ्रंट करना चाहिए कि नहीं। सो माय डियर लिस्टनर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको सबसे ज्यादा तकलीफ झूठ से नहीं हुई है, कैरेक्टर की एक्टिंग से हुई है। जब कोई इंसान गलती करता है और बाद में कहता है कि सॉरी प्लीज मुझसे गलती हो गई, तो यस वी फील बैड, दर्द होता है, लेकिन हीलिंग की पॉसिबिलिटी भी होती है। लेकिन जब कोई इंसान सच जानते हुए भी झूठ को मेंटेन करता रहे और ऊपर से खुद को हीरो दिखाने की कोशिश करे, तो प्रॉब्लम सिर्फ ट्रस्ट की नहीं रहती, प्रॉब्लम इंटीग्रिटी की हो जाती है। नहीं, और यहाँ मुझे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, हम अक्सर ना कन्फ्रंटेशन को सोल्यूशन समझ लेते हैं, लेकिन कन्फ्रंटेशन का पर्पस क्या है ये पहले डिसाइड करना जरूरी है। अगर आप कन्फ्रंट इसलिए करना चाहते हैं कि सामने वाला फाइनली सच बोल दे, तो हो सकता है कि आप डिसअपॉइंट हो जाए, क्योंकि जो इंसान इतने दिन से झूठ को प्रोटेक्ट कर रहा है वही अचानक से वो आज या जब कन्फ्रंट करे तो सच चूज कर ले। लेकिन अगर कन्फ्रंटेशन का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप अपनी बात कहना चाहते हैं और अपनी बाउंड्री क्लियर करना चाहते हैं, तो फिर वो एक बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि मुझे सच पता है, मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिस ट्रस्ट के साथ मैंने दोस्ती निभाई उसे कुछ अलग तरीके से हैंडल किया गया और उसका दुख मुझे रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहती हूँ पूरी बात से। सो कोई एविडेंस की लिस्ट नहीं दी, कोई डिबेट नहीं किया, ना किसी को कन्विंस करने की कोशिश की। ट्रूथ मतलब सच्चाई को प्रूव करने और पीस को प्रोटेक्ट करने में कभी कभी एक ही चीज को चूज करना पड़ता है। हर बार सच जीत जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन हर बार आप अपनी डिग्निटी जो है क्लैरिटी से बिल्कुल बचा सकते हैं और वही सबसे ज्यादा जरूरी है, पीस ऑफ योर ओन माइंड। एक और बात, कभी आपने अपने आप को ये मत कहिए कि मैं इतनी बेवकूफ थी कि मैंने इस पर ट्रस्ट किया। नहीं, ट्रस्ट करना वीकनेस नहीं है, झूठ बोलना उनकी चॉइस थी, उस चॉइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, आपकी नहीं, राइट। सो माई डियर लिसनर, हर दोस्ती जिंदगी भर के लिए नहीं होती, कुछ दोस्त हमें कंपेनियनशिप देते हैं और कुछ बहुत जरूरी लेसन्स, और फिर दोनों ही अपनी जगह पे वैल्यूबल भी होते हैं। होप दिस हेल्प्स। यह थी मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूं अंतरा, यहां पर आपके साथ। जी हां, अगली चिट्ठी की तरफ बढ़े, चलिए साथ में पढ़ते हैं। डियर मस्ती, मैंने अभी अभी बेबी डिलीवर किया है। मेरे हस्बैंड ऑफिस टूर पे गए हुए हैं और उनके पेरेंट्स मेरे साथ रहने आ गए हैं। मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ऑनेस्टली मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। आई एम ऑलरेडी इन टू माई मदरहुड और पोस्टमार्टम इमोशन से डील कर रही हूँ। उसके ऊपर से मुझे हर वक्त बताया जाता है, ये करो, ये मत करो, बेबी को ऐसे उठाओ, ऐसे मत खिलाओ। कभी कभी लगता है बस अपना बैग पैक करूं और अपने पेरेंट्स के घर चली जाऊं। मुझे पता है मैं फ्रस्ट्रेटेड साउंड कर रही हूं, लेकिन फिलहाल यही मेरी रियलिटी है। ओके, काम डाउन माय डियर लिसनर। सबसे पहले तो जो आप फील कर रही हैं, इट्स वेरी वेरी नेचुरल। एंड अगेन, आई स्टार्टेड माय शो टुडे विद दिस फीलिंग कॉल्ड बीइंग ओवरवेल्ड, व्हिच वी मोस्ट ऑफ द टाइम डू नॉट एक्सेप्ट और रियलाइज, बिकॉज स्कोप नहीं रहता है अक्सर उसको सोचने का। सो ये अक्सर देखा गया है कि जब एक बेबी घर में आता है तो सबका फोकस बेबी पे जाता है, लेकिन एक नई माँ को जिसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है सांस लेने की, उसके हार्मोन्स अभी सेटल हो रहे होते हैं, बॉडी रिकवर कर रही होती है, नींद नहीं पूरी हो रही होती है, इमोशंस हर दिन नए होते हैं, उसी वक्त हर तरफ से एडवाइस आने लगती है कि ये करो, ये मत करो, हमारे टाइम में ऐसा होता था, और धीरे धीरे राइट हेल्प भी कभी कभी प्रेशर की जैसे फील होने लगती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके इन्वॉल्व गलत हैं। हो सकता है कि वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से आपकी मदद करना चाहते हो, और पेरेंटिंग में हर जनरेशन को लगता है कि उनका तरीका ही सही है और वो अपनी जगह बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपका अपना तरीका ढूंढना भी उतना ही नॉर्मल है। सो माई डियर लिसनर, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त सबसे जरूरी चीज है कम्युनिकेशन। हम अक्सर सोचते रहते हैं कि अगर मैंने बोल दिया तो उनको बुरा लग जाएगा, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, और इसी सोच में हम चुप रह जाते हैं। लेकिन जितनी देर आप चुप रहेंगे उतना ही ये बोझ आपके दिल पर बढ़ता हुआ जाएगा, और मुझे लगता है आज वही हो रहा है। आप एक साथ बहुत सारी चीजें संभालने की कोशिश कर रही हैं, एक नई माँ बनना, एक अच्छी बहू बनना, सबको खुश रखना, किसी को हर्ट नहीं करना, बट लेट मी टेल यू अ ट्रूथ, एक ही वक्त पर सब कुछ परफेक्ट रखना प्रैक्टिकल नहीं होता है, कोई जरूरत नहीं है। और इस पूरी सिचुएशन में अगर सबसे ज्यादा कोई अनकंफर्टेबल है तो वो आप ही है। हो सकता है आपके इन-लॉज को अंदाजा ही ना हो कि आप इतना ओवरवेल्म फील कर रही हैं। उनके लिए शायद वो सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, उनके हिसाब से एवरीथिंग इज करेक्ट। इसलिए सबसे पहले अपने हस्बैंड से खुलकर बात कीजिए, उन्हें बताइए कि आप इमोशनली किस फेज से गुजर रही हैं, और अगर आपको लगता है कि इस बात को आप खुद भी प्यार से कह सकती हैं तो अपने इन-लॉज से भी कामली बात कर सकते हैं कि मैं आपकी हेल्प जरूर अप्रिशिएट करती हूँ, बस कभी कभी मुझे थोड़ा अपने हिसाब से जो है अपना टाइम स्पेंड करने दे, मैं भी सीख रही हूँ और मैं सीखना चाहती हूँ, मैं अपनी मिस्टेक्स से भी सीखना चाहती हूँ, अपनी गलतियां खुद करना चाहती हूँ। सी, कभी कभी लोग बदलते नहीं, बस उन्हें पता ही नहीं होता है सामने वाला फील क्या कर रहा है। सो माई डियर लिसनर, बाउंड्रीज दीवार नहीं होती है, एंड आई कीप टेलिंग दिस टू एवरी सिंगल पर्सन बिकॉज आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे, कि बाउंड्रीज दीवार नहीं होती हैं। बाउंड्रीज रिलेशनशिप्स को हेल्दी बना के रखती हैं, और जितना जल्दी प्यार और रिस्पेक्ट के साथ बाउंड्रीज सेट हो जाती हैं उतनी ही आसानी से रिलेशनशिप्स भी बनने लगती हैं। आई होप दिस हेल्प्स, आई होप यू फील बेटर, एंड आई होप दिस एंशियसनेस एंड ये फीलिंग ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड आपकी बहुत जल्द जो है सबसाइड कर दें, एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग द ब्यूटिफुल थिंग कॉल्ड मदरहुड रादर देन गेटिंग वरीड अबाउट इट।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

एंड फाइनली इंतजार मेरा खत्म हुआ और मैं यहाँ पर आ गई रेडियो मस्ती 24/7 पर. मैं रेणुका आपके साथ, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर मस्ती, दिल से. बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है, और मैं वो अनजाना इंसान बनके इस समय आपके पास आ चुकी हूँ. आपको कभी किसी ने ये कहा है कि यार तुम बहुत बदल गए हो या बदल गई हो? कहा है? जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है ना, मोस्ट ऑफ अस बिकम अ लिटिल इम्पेशेंट. आपको ऐसा नहीं लगता? छोटी छोटी चीजें इरिटेट करने लग जाती हैं. ट्रैफिक है, नॉइज है, जो लोग बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं, या कोई मैसेज बड़ी देर तक आता नहीं है, या एक चाबी इधर उधर हो जाती है, यू नो. देन समबडी समडे जस्ट लुक्स एट अस एंड सेज, यार तू पहले ऐसा नहीं था, यू हैव चेंज्ड, राइट? इट्स नॉट बिकॉज हम बुरे इंसान बन गए हैं, बट मे बी बिकॉज वी सिंपली वेरी टायर्ड, है ना. इतना टाइम बीत गया है कि हम जगल कर रहे हैं अपने करियर्स, बच्चों का ध्यान रखना, एजिंग पेरेंट्स, बिल्स पे करना, मीटिंग एक्सपेक्टेशंस, ऑलवेज बीइंग दैट स्ट्रॉन्ग पर्सन, एंड फिर कहीं ना कहीं हम अपने आप को रिचार्ज करना तो भूल ही जाते हैं. और कभी कभी इरिटेशन जो होती है ना, वो गुस्सा नहीं होता, इट्स अक्यूमुलेटेड एग्जॉशन, इट्स इमोशंस दैट हैवंट फाउंड वर्ड्स, इट्स द स्ट्रेस दैट हैजंट फाउंड रेस्ट. एंड बिफोर हम अपने आप को कुछ कहें, हमें लोग टैग कर देते हैं गुस्से वाला इंसान. चलिए, लेट्स आस्क अ डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू ट्रूली स्लोड डाउन? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग जस्ट फॉर योरसेल्फ? When was the last time you allowed yourself to simply breathe? क्योंकि क्या होता है ना, the people we love don't deserve the stress we collected somewhere else. और हम भी ये नहीं deserve करते हैं. तो आज ये काम कीजिए, be a little gentler with your family, with your colleagues, and most importantly with yourself. Okay? क्योंकि भाई जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, doesn't mean that we need to grow shorter in patience. Sometimes all it takes is a little more kindness towards that person जो आपको इस time शीशे में दिख रहा है. All right. छोटा सा ब्रेक, आई विल बी बैक आफ्टर दिस. एंड ऑफ कोर्स मेरे सवाल, ओहो पूछिए मत, फिर मुझे मुश्किल सा टेस्ट मिला है आज. देखते हैं मैं जवाब दे पाती हूँ या नहीं. अ वेरी गुड इवनिंग, दिस इज रेणुका विद यू.

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space. Dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके अंदर ये चाहत ही खत्म हो जाएगी तो शायद आप एक स्टेप भी आगे ना बढ़ पाए। हेलो हाय डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। एंड यू नो व्हाट, सारी चीजें ना दिल और दिमाग के खेल पर डिपेंड होती है। आप इनको जितना ट्रेंड कर देंगे आप लाइफ में उतना आगे बढ़ते जाएंगे, मूव ऑन करते जाएंगे। डेफिनेटली ऑन दिस नोट मेरे हाथों में एक लेटर आ चुका है जिसमें कोई अटक सा गया है। लिखा हुआ है डियर मस्ती दिल से, मेरे संग पिछले साल कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपनी आंखों से एक बहुत बुरा एक्सीडेंट देख लिया और वो

कि लाइफ का मतलब आगे बढ़ना ही होता है, ना कि मन में डर रखना होता है। हाँ, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप जिस गाड़ी में बैठे हैं तो पहले ही बोल दें कि भाई सारे रूल्स फॉलो करना, रैश ड्राइविंग मत करना, या खुद आप जब सीट पे बैठे तब भी आप इन बातों का ध्यान रखें, राइट?

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: यू नो व्हाट, आप अपनी पूरी दुनिया से जीत सकते हो लेकिन अपने घर वालों से हार कर ही मजा आता है यार। डियर मस्ती दिल से शो, मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू चल रही है एंड हम सभी आरजेस कोशिश करते हैं कि यहाँ जो आपके लेटर्स आए हैं उनमें जो सवाल, उनमें जो बातें हैं वो हम यहाँ म्यूचुअली एक्सप्रेस कर पाए। एनीवेज, अभी मेरे हाथों में जो लेटर है उसमें लिखा हुआ है कि मेरा बेटा अब टीनेज में एंटर कर गया है। वो बार बार मुझसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसे अपने फ्रेंड्स के साथ सोलो ट्रिप पर जाना है, अपने बर्थडे ट्रिप को और ज़्यादा स्पेशल बनाना है, लेकिन मैं जानबूझ के मना कर रही हूँ, टाल रही हूँ इस चीज़ को बिकॉज मुझे बहुत डर लगता है और स्पेशली अपने बच्चे को अकेले भेजने से। ना ना ना ना ना ना। सो जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, ये एक सिर्फ इंसान ने नहीं भेजा है, ये एक मॉम ने भेजा है। एक मॉम की फिक्र जो है ना वो इनके शब्दों में नजर आ रही है। सो आप जिन्होंने मुझे लेटर दिया है, आप डेफिनेटली सही सोच रही हो, सही डायरेक्शन में सोच रही हो, लेकिन अब आप मुझे बताइए, आप भी तो बहुत सारी ट्रिप्स, बहुत सारी चीज़ों में फर्स्ट टाइम जो है ना अपना डर मिटाकर आगे बढ़ी। हाँ, आपने आज भी बहुत सारी ट्रैवलिंग अकेले कर ली होगी और आपको ऐसा लगा कि आपके अंदर समझदारी नहीं थी, आपके अंदर थी ना, तो इनडायरेक्टली आपके बच्चे ने भी वो समझदारी आपसे ग्रैब की है। और अगर आपको डाउट है तो आप उसे बैठ कर वो सारी चीज़ें बताइए, गाइड कीजिए और उसके संग कॉल पर कनेक्टेड रहिए। एंड ऐसा नहीं हो सकता कि आपका डर जो है ना वो आपके बच्चे के पहले सोलो ट्रिप के जो मोमेंट है वो कहीं ना कहीं पीछे हटा दे, राइट? तो गो फॉर इट, ट्रस्ट योर बेबी एंड डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड।
1: क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है,
2: क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है।
0: बिल्कुल ऐसे ही खूबसूरत गाने डियर मस्ती दिल से शो पर मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ।
3: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर. मैंने कहा था ना कुछ देर पहले कि मैं वापस आऊंगी और उस समय मैंने बात करी थी इम्पेशेंस की, है ना. तो आप लोग इम्पेशेंट तो नहीं हुए मेरा इंतजार करते हुए?
1: नो फिल्टर्स नो जजमेंट जस्ट योर लेटर्स डियर मस्ती दिल से.
0: और मेरी पहली चिट्ठी आज की कुछ ऐसी है कि एक लड़की जो 15 साल से नौकरी कर रही थी. She says, "Hi Renuka, I worked for almost 15 years. Like many women, I wasn't just managing my career. मैं मैनेज कर रही थी अपना घर, बच्चे, एजिंग पेरेंट्स, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट्स, ग्रोसरीज, एवरीथिंग. और पिछले साल I lost my job. Not because I wanted to leave, I was retrenched. And I've been trying very hard to find another role, but nothing has worked out so far. सबसे बड़ी मुश्किल है not just staying at home. The hardest part is asking my husband for money. Every time I need something, even something small, I feel guilty, almost as if I've stopped contributing to the family. My husband has never made me feel that way. It's my own mind. How do I stop feeling this? Like I'm no longer adding value just because I'm not bringing home a salary. You know what? ये वाला टॉपिक मुझे पता है कि इट इज गोइंग टू रेजोनेट विद मेनी वुमेन, स्पेशली दोज इन देयर 40s, 50s, क्योंकि आइडेंटिटी, सेल्फ वर्थ, इनविजिबल लेबर, जी हाँ, ये टॉपिक इन सभी चीजों को टच करता है. छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके बताते हैं आपको. यू हैव नॉट स्टॉप्ड कॉन्ट्रीब्यूटिंग माई डियर. There's a lot more to it. All right. Stay tuned. This is Dear Masti Dil Se.

टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स।

आइए आइए, कहा था ना यही इंतजार करूंगी। रेडियो मस्ती 24/7 पर आप हैं रेणुका के साथ और ये है डियर मस्ती दिल से। ब्रेक से पहले सवाल हमारे पास कुछ था अबाउट आइडेंटिटी, सेल्फ वर्थ एंड अबाउट दिस लेडी हु वर्क्ड फॉर 15 लॉन्ग इयर्स एंड हैड अ करियर, लेकिन लास्ट ईयर रिट्रेंच हुई, उनकी नौकरी गई और अब उन्हें लगता है कि मुझे बहुत बुरा लगता है टू आस्क माय हस्बैंड फॉर मनी, एंड सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे टोटली वर्थलेस हो गई हूँ अपने घर के लिए। यू नो व्हाट, दिस लेटर रियली टच्ड माय हार्ट because I know there are many women listening to us today who are quietly carrying the same guilt. Bahut se saalon tak your salary was not the only thing you brought home. You brought stability. You managed birthdays, school ke schedules, hospital ke visits, family worries, emotional support and somewhere in between aapne apna career bhi banaya. The paycheck recognized only one part of your contribution, my dear. उसने तो रिफ्लेक्ट किया ही नहीं कि आपने और सब क्या क्या किया था। लूजिंग अ जॉब कैन मेक अस क्वेश्चन आवर वर्थ, बट लूजिंग अ जॉब डज नॉट मीन दैट यू हैव लॉस्ट योर वैल्यू। राइट नाउ आपका रोल बदल गया है लेकिन आपकी वैल्यू नहीं। एंड अबाउट आस्किंग योर हस्बैंड फॉर मनी, मैरिज इज नॉट अबाउट एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, राइट, पार्टनरशिप होता है। इसीलिए तो कहते हैं देयर विल बी सीजंस व्हेन वन पर्सन कैरीज मोर फाइनेंशियली एंड देयर मे बी अदर सीजंस व्हेन द रोल्स आर रिवर्स्ड। देयर शुड नेवर बी अ शेम, किसी तरह का शेम नहीं होना चाहिए इन एक्सेप्टिंग सपोर्ट फ्रॉम समवन हु लव्स यू। देखते रहिए, ढूंढते रहिए अपॉर्चुनिटीज, कीप लर्निंग, बिलीव दैट दिस चैप्टर इज टेम्पररी, बट अंटिल देन प्लीज अपना मेजर, अपने आप का जो वर्थ है ना उसको मेजर मत कीजिए बाय योर मंथली सैलरी, बिकॉज द पीपल हु ट्रूली लव यू मेजर इट बाय योर प्रेजेंस, योर स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग यू कंटिन्यू टू डू एवरी सिंगल डे। कभी कभी जिंदगी हमें सैलरी से ब्रेक देती है, सेल्फ वर्थ से नहीं। ओके, सो जस्ट चीयर अप। रेडियो मस्ती 24/7 पर आई होप आप अपनी वर्थ को पहचानते हैं और वो प्राइसलेस होती है।

0: shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
1: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
2: You know what? ये जो movies बनती है ना, ये हमारी real life problems को देखकर ही बनती है. ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं होती है. किसी ना किसी की लाइफ में ये प्रोसेस चल रहा होता है जिसे ये मूवी में डाल देते हैं. डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ. और जब से मैंने आपके लेटर्स पढ़ने की शुरुआत करी है ना, तब से मुझे भी फील हो रहा है कि अरे फिल्मों जैसे किस्से तो आपके घर में चल रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में चल रहे हैं. एनीवेज, अभी मेरे हाथों में जो लेटर है उसमें लिखा हुआ है, हाय डियर मस्ती दिल से, मेरी शादी फिक्स हो चुकी है एंड मैं उससे बहुत खुश हूँ, पर मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जो मुझे अच्छी तरह से जानता है. मेरी शादी फिक्स होने के बाद भी वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है, पूरी तरीके से हिंट दे रहा है कि वो मेरी लाइफ में एंटर करना चाहता है, वो मेरे संग टाइम स्पेंड करना चाहता है. और मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए. अच्छा, बातें तो बड़ी फिल्मी चल रही हैं आपकी लाइफ में. हाँ, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगी, देखो बहुत पुरानी कहावत है कि दो नाव पर सवारी नहीं करी जा सकती. अगर आपका दोस्त, आपका बेस्ट फ्रेंड ये हिंट्स आपको दे रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में उसके लिए कुछ भी नहीं है, दैट्स व्हाई आपने अपनी लाइफ में मैरिज जैसा डिसीजन किसी और के साथ लिया, राइट? लेकिन आपका दोस्त ये बातें समझ नहीं रहा है, तो आपको अभी के अभी शादी से पहले सॉर्ट करना पड़ेगा ये सब. ऐसा नहीं है कि दोस्ती नाते के खातिर आप उससे रिश्ता बनाए रखें और चीजें कंटिन्यू रहे, नहीं नहीं, ये आगे जाके बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेशन कर सकती है. सिर्फ एक इंसान से एक ही तरह का रिश्ता पॉसिबल है, ऐसा मुझे लगता है. तो अगर आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के अंदर ऐसी बातें नजर आ रही हैं, तो फॉर अ वाइल आप उनसे थोड़े से रिश्ते कट आउट कर दीजिए, बिकॉज वो आपकी लाइफ की भी हैप्पीनेस समझ नहीं पा रहे हैं कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हो. ऑन सेकेंड थॉट, अगर आपके मन में अभी इस बात को लेके क्वेश्चन उठ रहे हैं कि आपने जिनके साथ आगे लाइफ में बढ़ने का सोचा है वो इतने खास नहीं है और जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो आपको ज्यादा समझता है, तो आपको थोड़ा वाइसी वर्सा सोचना पड़ेगा. अदरवाइज मैं यही बोलूंगी, दो नाव पर सवार मत होइए, एक इंसान से एक रिश्ता रखिए, ऑन होल्ड डालिए, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियरली आगे बढ़ पाए.

यू नो वॉट, कुछ बचपन वाली आदतें अगर आपके पचपन में भी नजर आ रही हैं, व्हाटएवर योर एज, ओके, तो समझिए आपका दिल बहुत मासूम है. हेलो, हाय डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ. एनीवेज, अभी मेरे हाथों में जो लेटर है वो पढ़कर मुझे हंसी भी आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये सिर्फ इनकी दिक्कत नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की दिक्कत है. और दिक्कत नहीं, ये तो बहुत प्यारी सी हैबिट है यार. जिन्होंने मुझे लेटर भेजा है उसमें लिखा हुआ है, हेलो डियर मस्ती, लाइफ में मैंने बहुत मेहनत करी है एंड आज के टाइम पे मैं बहुत कुछ अफोर्ड भी कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज मेरे अंदर ना बहुत पहले से इनबिल्ट है और मैं उससे बहुत ज्यादा अनॉय फील करता हूँ, एंड दैट इज कि मैं आज भी बिना प्राइस टैग देखे कुछ नहीं खरीदता और आधे से ज्यादा चीजें मैं इसीलिए छोड़ देता हूँ क्योंकि उसके प्राइस टैग से मुझे लगता है कि ये अमाउंट बहुत हैवी है. एनीवेज, जिन्होंने मुझे एक लेटर भेजा है, मैं आपको बोलना चाहूंगी आप एकदम सही डायरेक्शन में हैं, लिटरली सही डायरेक्शन में हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अजीब सी आदत है प्राइस टैग देखना, तो ऐसा नहीं है भाई, आपकी मेहनत की कमाई है. आप ऐसे ही कहीं भी किसी भी चीज में उड़ा देंगे क्या? ना ना ना ना ना. ठीक है, सोशल मीडिया की वजह से हमें बता दिया गया है कि जीवन सिर्फ 4 दिन का है, इसे जियो तो जियो, ऐसे जियो कि जैसे कि आखिरी हो. ना ना ना, बट इन रियल लाइफ हमें आगे से आगे का सोचकर चलना पड़ता है, ओके? और रही बात जब आपके मन मुताबिक कोई चीज मिल रही हो तब भी आप प्राइस टैग की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, तो ऐसी चीजों में थोड़ा सा एक्सेप्शन बना दीजिए कि ये आपकी विश लिस्ट में था तो इसको ले लेते बिना प्राइस टैग देखे. हाँ?

0: रेडियो मस्ती 347 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7.

वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 अलाइव। बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आई नो एक के बाद एक हम सब आके आपके साथ हमारी आज की जो है इस एपिसोड की चिट्ठियां पढ़ रहे हैं। अब अंतरा की बारी है, सो बिल्कुल डाइविंग इनटू इट। डियर मस्ती, मेरे ऑफिस में एक कलीग है जो मुझे लगता है हर चीज में मुझे कॉपी करता है। मैं जो पहनता हूँ अगले दिन वो भी सेम कपड़े स्टाइल करके ले आता है। मैंने जो फोन लिया उसने भी वही मॉडल खरीद लिया। मैंने शूज का ब्रांड बदला उसने भी वो ले लिया। इतना ही नहीं, मेरे ऑफिस फ्रेंड्स के साथ भी वो क्लोज होने की कोशिश करता है। शुरू में मुझे फनी लगता था, बट ऑनेस्टली मुझे अब बहुत ही अनकंफर्टेबल सा फील होने लगा है। क्या मुझे उससे कह देना चाहिए कि मुझे ये बिहेवियर उसका पसंद नहीं आता? काफी यूनिक सी प्रॉब्लम है, बट वेल माय डियर लिसनर, सबसे पहले तो ओवर रिएक्ट तो नहीं ही कर रहे हैं। मैं भी आपकी जगह होती तो मुझे भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये चीज थोड़ी सी अजीब ही लगने लगती। और ना ही ये सिर्फ कपड़ों या फोन की बात है, मुझे लगता है ये फीलिंग बहुत लोगों ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस की होगी कि हम सब इंस्पायर होते हैं कभी किसी एक्टर से, कभी किसी कलीग से, कभी किसी दोस्त से, और इंस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंस्पिरेशन और इमिटेशन के बीच एक बहुत ही थिन लाइन होती है, और जब वो लाइन बार बार क्रॉस होने लगे तो डिस्कम्फर्ट होना बिल्कुल नेचुरल होता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान की एक आइडेंटिटी खुद की होती है। हम अपनी चॉइसेस से, अपनी पर्सनालिटी से, अपनी इंडिविजुअलिटी से पहचाने जाते हैं, और जब बार बार लगने लगे कि कोई हर चीज आपकी रेप्लिकेट कर रहा है तो नेचुरली लगता है कि क्या मेरी पर्सनल स्पेस मेरी नहीं रही। एक और पॉसिबिलिटी भी होती है, बाय द वे, हो सकता है वो कलीग आपको जेन्युइनली बहुत एडमायर करता हो। हो सकता है उसे ये लगता हो कि ये इसकी चॉइसेस बहुत अच्छी हैं, मैं भी ट्राई करता हूँ, और उससे बिल्कुल भी अंदाजा ही ना हो कि आप इस बात से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। इसीलिए इंटेंट और इम्पैक्ट, उसमें फर्क समझना कई बार जरूरी हो जाता है। इंटेंट शायद अप्रिसिएशन हो, लेकिन इम्पैक्ट डिस्कम्फर्ट बन गया है। अब आते हैं आपके सवाल पर कि क्या बात करनी चाहिए उनसे। अगर ये बिहेवियर अब आपको मेंटली अफेक्ट कर रहा है तो हाँ, लेकिन कॉन्फ्रंटेशन के फॉर्म में नहीं, कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में, अकेले में, बिना उनका मजाक उड़ाए, बिना उनको अक्यूज किए कि मुझे एक बात शेयर करनी थी, शायद तुम्हारा इंटेंशन कुछ और हो, लेकिन मुझे कभी कभी फील होता है कि मेरी काफ़ी पर्सनल चॉइसेस रिपीट हो रही हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, बस सोचा ऑनेस्टली शेयर कर लूँ तुम्हारे साथ ये बात। कभी कभी ना सामने वाले को सच पता ही, पूरी बात ही नहीं पता होती है कि उसका बिहेवियर किसी और को अनईजी कर रहा है, और जब तक आप बताओगे नहीं तब तक उनको पता कैसे चलेगा, दैट इज माई थिंग। और अगर बात करने के बाद भी सब कुछ वैसा ही चलता रहे तो फिर शायद जवाब कॉन्वर्सेशन नहीं है, डिस्टेंस है। डियर लिसनर, याद रखिए कि हर इंसान को अपनी इंडिविजुअलिटी जीने का हक है, और उस इंडिविजुअलिटी को प्रोटेक्ट करना ईगो नहीं होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। होप दिस हेल्प्स। यह दिया मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

Alright, I am back on the airwaves. This is Radio Masi 24/7 and of course मैं हूँ रेनुका. अरे वही रेडियो वाला दोस्त ना जो आपको दुनिया भर से कहीं बेहतर समझ लेता है कभी कभी. Dear Masti, दिल से. Because sometimes रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. तो चलिए इस अनजाने इंसान के पास अगली चिट्ठी क्या है ये उसके बारे में बताते हैं. बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ होती है स्पेशली पार्टनर्स और हस्बैंड वाइफ की. नहीं वेल हाय रेनुका, दिस मे साउंड लाइक अ स्मॉल इश्यू लेकिन मुझे तंग कर रहा है. माई हस्बैंड इज अ पार्ट ऑफ फ्यू व्हाट्सएप ग्रुप्स विद हिज फ्रेंड्स. मैं भी हूँ उनमें. कभी कभी मैं वो चैट्स में जब देखती हूँ तो आई नोटिस दैट ही इज द लाइफ ऑफ द कॉन्वर्सेशन. ही इज विटी, ही इज क्विक विद अ फनी रिप्लाई, ही कीप्स एवरीवन एंगेज्ड, एवरीवन लाफिंग. स्पेशली जो लड़कियां हैं उस ग्रुप में, व्हेन दे राइट समथिंग ही इज द फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड विद ह्यूमर. बट जब मैं मैसेज करती हूँ समटाइम्स माई टेक्स्ट रिमेन अनरेड फॉर आवर्स और आई गेट अ वन वर्ड रिप्लाई, बिजी. I know he's very busy. I know he works hard. I'm not asking for constant attention. But kahin na kahin mujhe hurt hota hai that strangers and friends seem to get the best version of him while I get whatever is left at the end of the day. Am I overthinking? My dear, Radio Masti 24/7 par jis tarah ke sawal aate hain na, mujhe to lagta hai yaar ye कितनी कॉम्प्लिकेटेड जिंदगी है. नहीं, हम ह्यूमंस कितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं. छोटी सी सिंपल सी बातों को भी कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि उसके बाद सोचते रहते हैं और फिर उसको एक हवा बना लेते हैं. यू नो हवा, आई हैवंट यूज दैट वर्ड इन एजेस बट यू नो व्हाट आई मीन. लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, वापस आऊंगी बहुत ही जल्द और आपको बताऊंगी कि आप ओवर थिंकिंग कर रही हैं या नहीं कर रही हैं. स्टे ट्यून्ड.

टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स।

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: आइए आइए, आपका ये रेडियो वाला दोस्त फिर से आ गया है जो आपको दुनिया से कई बार बेहतरीन समझ लेता है। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट।
0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: एंड ऑन मस्ती 24/7, वो अनजाना इंसान इस टाइम पर मैं हूँ। थैंक्स फॉर दिस लेटर। अगर आप में से कुछ लोग अभी अभी आए हैं और उनको नहीं पता है हम किस चिट्ठी की बात कर रहे हैं, तो वेल आई एम टॉकिंग अबाउट द ईमेल दैट आई हैव गॉट फ्रॉम समबडी हु सेज कि शी इज ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स विद हर हस्बैंड एंड आल्सो अदरवाइज शी वॉचेज हर हस्बैंड एज बीइंग द सेंटर ऑफ अ लॉट ऑफ मैसेजेस जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में चलते हैं। वहाँ पे ही इज विटी, इज ह्यूमरस, ही इज क्विक, ही मेक्स एवरीवन यू नो एंगेज्ड। लेकिन जब ये एक मैसेज भेजते हैं तो घंटों तक जवाब नहीं आता, या आता है एक वर्ड का जवाब विच सेज बिजी। सो माय डियर, मुझे नहीं लगता कि आप व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए परेशान हैं। आई थिंक आप एक बहुत ही डीप सा क्वेश्चन पूछ रही हैं, दैट इज व्हाई डज इट फील लाइक एवरीवन एल्स गेट्स हिज अटेंशन बिफोर आई डू, और एवरीवन गेट्स दैट साइड ऑफ हिम व्हिच आई डोंट सी। वेल द ट्रूथ इज मेनी ऑफ अस अननोइंगली बिकम मोर एक्सप्रेसिव विद द आउटसाइड वर्ल्ड, और बहुत कैजुअल हो जाते हैं हम उन लोगों के साथ जो बहुत जो मैटर करते हैं, यू नो हु मैटर मोस्ट। वी अज्यूम दे विल अंडरस्टैंड, आई विल रिप्लाई लेटर, शी नोज आई लव हर, बट लव इट नीड्स एक्सप्रेशन टू, राइट, नॉट जस्ट अजम्पशन। एक रिलेशनशिप जो रेयरली टूटता है बिकॉज ऑफ वन अनआंसर्ड मैसेज, ऐसा तो होता नहीं है, राइट? It weakens when one partner starts feeling कि मैं priority नहीं हूँ। So instead of saying why do you reply to everyone except me, try saying I miss talking to you the way we used to। उसमें ना कोई blame game नहीं है, सिर्फ honesty है। And if your husband is listening today, remember your spouse shouldn't have to compete with a WhatsApp group for attention, my dear। Sometimes सबसे important message of the day होता है, not the funniest one। It's just that simple thing saying how are you, because in the end the people waiting for your reply are often the people waiting for your time। To bas hum sab online bahut badhiya connect ho gaye hain, but kabhi kabhi apne hi rishton mein typing thoda kam ho gaya hai, nahi? Radio Masti 24/7 par zara un rishton ki taraf dekhiye jahan par typing thodi zyada honi chahiye। Very good evening।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning.
4: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: मैंने पिछले 7 दिनों में ये सब है खोया।
1: लास्ट लिंक। जी हाँ, इसी के साथ आज के डियर मस्ती दिल से का सफर बस यही तक। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराल के साथ आप सुन रहे थे डियर मस्ती दिल से। पता है, जब मैं सारे लेटर्स यू सुन रही थी और खुद के भी लेटर्स देख रही थी जो मेरे पास आए थे, एक चीज मुझे बार बार फील हुई, वो ये थी कि हम सब अलग अलग जिंदगियां जीते हैं, राइट? अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग लोग मिलते हैं, लेकिन इमोशंस सरप्राइजिंगली बहुत सिमिलर टाइप के होते हैं। किसी को ट्रस्ट टूटने का दर्द है तो किसी को मदरहुड का ओवरवेल्म है, कोई बाउंड्रीज बनाना सीख रहा है तो कोई बस इतना चाहता है कि कोई उसकी बात बिना जज करके सिर्फ सुन ले। और शायद इसी बात ने मुझे एक चीज सिखाई है, दैट लाइफ तब आसान नहीं होती जब प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, लाइफ तब थोड़ी हल्की लगती है जब प्रॉब्लम्स बांटने के लिए कोई मिल जाता है। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि मेरी प्रॉब्लम तो छोटी है या लोग क्या सोचेंगे या छोड़ो यार किसको बताने से क्या ही हो जाएगा। कभी कभी सोल्यूशन बाद में मिलता है, लेकिन दिल पे जो एक हैवीनेस सी फील होती है वो सिर्फ बोल देने से ही हल्का हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि आपके दिल में भी ऐसी कोई बात है जो शायद आप अपने घर वालों से नहीं कर पा रहे हो, फ्रेंड से नहीं कह पा रहे हो, या सिर्फ किसी न्यूट्रल इंसान से शेयर करना चाहते हो, तो याद रखिए, गूगल नहीं, चैट जीपीटी भी नहीं, डियर मस्ती दिल से ह्यूमन टच का, ह्यूमन बातों का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है, कोई भी एआई मुकाबला नहीं कर सकता है। सो हम हमेशा आपके लिए यहाँ पर है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9151893 पर। आपकी आइडेंटिटी हमेशा बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहेगी और बिल्कुल हम हर लेटर को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, उन्हें काफी महसूस करते हैं। आज जाने से पहले भी ये बात कहकर जाना चाहती हूँ, एंड आई वांट टू लीव लाइक दैट, दैट खुद के साथ भी उतनी ही काइंडनेस रखिए जितनी आप दूसरों को देते हैं। हम अक्सर अपनी गलतियों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और दूसरों की गलतियों के लिए काफी पेशेंट। कभी कभी इक्वेशन उल्टा करके देखिए, शायद जिंदगी थोड़ी और नरम, थोड़ी और सॉफ्ट लगने लगे। मैं आरजे आंत्रा एंड ऑन बिहाफ ऑफ रेणुका एंड नुपुर, डियर मस्ती दिल से फिलहाल साइनिंग ऑफ।

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

0: शक्ति बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: बड़ी दूर से

रात अकेली है तो क्या हम तो

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

दिन की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email WhatsApp

0: जाने क्यों, जाने क्यों दिल बोल। ये सुबह सुबह क्या गाना सुना दिया। आई लव दिस गाना एक्चुअली, दोस्ताना के साउंडट्रैक से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, दिस इज मस्ती मैडनेस।
1: दुनिया क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
0: कहाँ वो बात कर रहे हैं अपने दोस्तों की और दोस्ताना की, और कहाँ मेरे को ये मिली है सुबह सुबह, जाने क्यों, जाने क्यों।
2: भाई उसके बाद वाला लाइन भी तो देखो और सुनो, क्योंकि वो ये कह रहा है दिल जानता है कि तू है तो I'll be alright.
0: That is what you think. I have my doubts. I'll be alright with you around. गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आप सब भी ऑल राइट रहेंगे क्योंकि हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, 31 तारीख अंतरा, देखते देखते देखना 31 तारीख।
2: अगस्त का महीना बस यूं आया, यूं ही आ गया। देखो हाँ। देखते ही देखते भाई कहाँ जा रहा है ये टाइम, इट इज क्रेजी फास्ट। आपको नहीं लगता लाइक ये अलग लेवल का 2.0 फास्ट चल रहा है?
0: एब्सोल्युटली, मैं लास्ट वीक ही बोल रही थी सातवां महीना खत्म हो गया, आठवां महीना शुरू।
2: और फिर डिड नॉट साउंड दैट ग्रेट।
0: ओला ओला महबूबा महबूबा, दो दो महबूबाज राइट हियर रेडियो मसी 24/7 पर आपके साथ रहने के लिए राइट अप टू 10 इन द मॉर्निंग। क्यों भाई, खबरें उबरे लाई हो या आज तैयारी नहीं है?
2: यो बेबी, सब तैयार, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं।
0: हो तो जाएगा ही, लेकिन मैं इतना बता दूं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मेरे बाहर जाते ही तुम जब मेरी खबरें चुराती हो ना, वो मुझे पता लग गया है, सब पता लग गया है कैमरे में।
2: अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि आपने मेरी खबरें चुराई है, बट बाकी आज देख लेंगे।
0: हाँ वही होता है, जब बच्चे फेल हो जाते तो कहते हैं उसने मेरी आंसर शीट ना उसके नाम पे चली गई है। बिल्कुल वही वाला हाल है। मेरी पड़ोसी ने भी एक बार कहा, मुझे घर पे आके कहती है कि स्कूल से मार्कशीट्स आ गई हैं घर पे, कहीं मेरा तुम्हारे पास तो नहीं चला गया? मैंने कहा बहन मेरा मेरे पास ही है, तू चिंता मत कर, हाँ अपना ढूंढ जाकर। हाँ
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us for

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए,

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: ऐसी किस्मत भगवान जी क्यों नहीं देते हमें, क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता, ये हमेशा मैं फिगर आउट ही करती रह जाती हूँ.
2: क्या कमी रह गई बहन.
3: This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: जी बिल्कुल, मस्ती मैडनेस चल रहा है, रेडियो मस्ती 24/7 है और यहाँ पर मैं बिल्कुल आज बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फील कर रही हूँ. पूछो क्यों.
1: क्यों?
2: क्योंकि अंतरा की खबर है.
1: ओके, इफ यू से सो. अगर इसमें से पॉजिटिविटी निकल रही है, क्योंकि मुझे तो कोई भी पॉजिटिविटी का साइन इसमें नजर नहीं आ रहा है एक्सेप्ट फॉर दिस वुमन. ठीक है.
2: अच्छा.
1: लंदन की ये बंदी फ्ली मार्केट गई, तो क्या होता है कि फ्ली मार्केट में कभी रैंडम चीजें पसंद आ जाती है. ठीक है. उसने एक रिंग सा देखा, उसको बड़ा पसंद आया, उसने खरीद लिया $13 में. ठीक है. और उसको लगा चीप कॉस्ट्यूम ज्वेलरी नहीं होती है, उसी वही सोच कर कि कभी किसी के साथ ऐसे मैच करके पहन लूंगी, बट मेरे को डिजाइन अच्छा लगा तो मैंने गए. डेकेड्स, काफी साल उसने हाँ. ये यूज किया पहना विदाउट रियलाइजिंग वो जो बड़ा सा स्टोन उसमें लगा हुआ है
2: नहीं,
1: वो रियल रियल because it's old cut made it kind of look dull compared to the modern diamonds. जब एग्जामिन कराया, इट वाज डिस्कवर्ड इट वाज अ 26.27 कैरेट का डायमंड.
2: है सच का था,
1: सच का डायमंड. एंड शी सोल्ड इट लेटर ऑक्शन में फॉर $8,50,000.
2: ऐसा कहाँ होता है.
4: हर कहीं जो कभी मिले,
2: जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं.

0: होता है अंतरा, होता है, हमारा भी टाइम आएगा, आई प्रॉमिस यू आएगा, कभी तो आएगा।
1: ओके इफ यू से सो।
0: देखो अगर होप नहीं है तो जिंदगी नहीं है, इसीलिए बस उम्मीद पर जिंदगी कायम है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमें कोई गिफ्ट देगा, हमारा लिसनर ही देगा, तू देखना एक दिन हमें।
1: हाँ देख, बिल्कुल, मैं आपके भरोसे पे भरोसा करना चाहती हूँ।
0: प्रेशर हम पे नहीं है, प्रेशर इन पे है।
1: इसीलिए।

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: भाई साहब, मैं कहती हूँ हम उस जमाने के हैं जब ऑनलाइन तो छोड़ो इंटरनेट भी नहीं होता था, राइट? आई मीन हमने तो अपने सामने देखा इंटरनेट को बनते हुए एंड ऑल दैट स्टफ। एंड आज के दिन में एक बटन पे आपके घर पे कुछ भी आ सकता है। बताओ क्या जमाना आ गया है।
3: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
4: बट आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट आई कंप्लीटली लव दैट एक मिनट में, 10 मिनट में घर पे चीज आ जा रहा है।
2: हाँ,
4: क्रेजी,
2: रुइन हो गए हम, रुइन। और भाई, क्रेडिट कार्ड तो हमारा बेचारा बच बच के बस बचता ही रहा हूं मैं तो। अब ऐसा है कि एक चीज मैं पढ़ रही थी हाल ही में, एक न्यूज कि ब्लिंकिट, राइट, शादी चल रही है, अब शादी के टाइम पर फेरे हो रहे हैं, ठीक है, फेरे के टाइम पर समबडी रियलाइज, भाई साहब सिंदूर तो लाना ही भूल गए। हाँ, अब बताओ कि क्या होगा, क्योंकि वो क्या है ना, छोटी छोटी तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स ने जान खाई हुई है आजकल, राइट? तो घर से सारा सामान तुम इतने दिन पहले से ले जाते हो, तो यू हैव टू बी लाइक अ ह्यूज प्लानर, ओके, समबडी हैज टू रियली प्लान थिंग्स आउट फॉर यू। अब एक छोटी सी चीज लाइक अ सिंदूर रह गया, अब क्या करें? तो उन्होंने ब्लिंकिट पे ऑर्डर किया, ब्लिंकिट,
4: अमेजिंग,
2: और विद इन 16 मिनट्स इट वाज डिलीवर्ड, कैन यू बिलीव इट? हवन की सामग्री से लेके सिंदूर तक लेके, राइट इन द मिडल ऑफ लेट नाइट सेरेमनीज, एवरीथिंग वाज डिलीवर्ड। That is the beauty.
4: I love Blinkit. Like for just for the sake of 10 minutes का thrill ना, मैं तो इंडिया पहुंचते ही मैं ऐसे शुरू होती हूँ कि कुछ चाहिए तुझे, कुछ चाहिए तुझे, कुछ चाहिए तुझे, कुछ चाहिए, अभी बता, अभी मंगाती हूँ, 10 मिनट में आएगा।
2: Exactly. And somebody was telling me the other day, right from a pin, मतलब एक छोटी सी needle से लेके ambulance तक, you can actually call on Blinkit. Wow.
4: Do you know there are cases where normal ambulances are not able to reach on time? Blinkit ambulances, which are fully equipped, they are reaching before the like in 10-8 minutes.
2: Sahab, impressive. छाप तिलक, ये होती है ना छाप छोड़ने वाला बिजनेस, तो ये होता है। मजा आ गया, मजा, मजा, very good.

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: สวัสดีครับคำคำคำทูไทยแลนด
2: ์พอดไทย
3: Musty madness जहाँ news भी होती है
2: Radio Musty 24/7 पर welcome to Thailand
4: Listen, stop it, okay? I love Thailand. I love it.
3: Me too. But the thing is that you will like you will love them even more. Mm-hmm. I'll tell you how.
4: Tell me.
3: Not because that one news wo jo ek cafe ka tha just reminding you of that latte. But bhai Thailand mein ek candidate hai jo ki prime minister ki gaddi ke liye jo hai bilkul lad rahe hain. Naam inka main lena de nahi paunge because it's very complicated and very long. So just a minister, theek hai. Unka campaign ka jo hai proposal kuch aisa hai, he wants women to be able to have up to 4 husbands.
4: Hey?
3: Up to 4 husbands.
4: Ye inka manifesto hai.
3: As long as everyone involved agrees.
4: I love it.
3: And the idea is presented as a proposal for gender equality.
4: Agree. I agree.
3: I agree, बिल्कुल. कि भाई अगर दूसरी तरफ तेरे को अगर बंदों में कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है वो कर सकते हैं तो फिर व्हाई नॉट विमेन.
4: बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट. आई वुड थिंक सो. क्यों भाई सबको अलाउड होना चाहिए, व्हाई ओनली द मेन. या
3: I like, why only boys can have fun?
4: मुझे तो लाइक हो गई ये वाली बात. बिल्कुल. तो फिर अब ये जीते या नहीं जीते? Obviously नहीं जीते.
3: अभी तक पता नहीं है. इनका ये वो है कि अब ये सारी आई थिंक लेडीज को इम्प्रेस करना चाहते हैं कि वी विल गिव यू दैट. तुम एक बार हमें मिनिस्टर बनाओ तो सही.
4: यार सवाल ये है कि औरतों को चाहिए भी सही, बिकॉज आई डोंट थिंक एनी वुमन वॉन्ट्स फोर हस्बैंड्स. एक हाथ के साथ में हमें चाहिए नहीं, हमें फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए. हम एक से खुश हैं वो ढंग का होना चाहिए.
3: मैनिफेस्टो अगर ये कहता कि जो है उसको जब मर्जी आया आप तो छोड़ के जा सकते हो.
4: हाँ वो अलग बात है. तो थोड़ा सा आई थिंक वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ अ चेंज इन हिज मैनिफेस्टो.

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: लड़के.
1: एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग येट अगेन रेडियो मस्ती 24/7 पर. बस मैंने कहा कि भाई 8 नहीं बजने चाहिए, मुझे ये खबर पहले ही बतानी है. जी हाँ, इट इज़ फॉर दी पीपल हु आर हियर हमारे साथ ऑन टाइम, तो उन्हें तो बेटर खबरें मिलनी चाहिए ना यार.
2: मस्ती मैडनेस, जहाँ न्यूज भी होती है
1: इन गैस्ट्रोनॉमिक खबरों के लिए. यहाँ पर अंतरा और रेणुका एट योर सर्विस है ना.
3: जस्ट इन केस आपने मिस अगर कर दिया तो टेंशन ना ही लेने का, क्योंकि कल जो है यानी कि सैटरडे वाले दिन शाम को 5 बजे से ऑन कोर आता है, तो ये याद रख लो बस.
1: ये हो गया हमारा काम खत्म. अच्छा अब अंतरा, मैं तुम्हें लेके जाना चाहती हूँ पुणे. ओके, जहाँ पर एक फीमेल डॉक्टर और मेल इंजीनियर दोनों की शादी हुई. okay. और 24 घंटे के बीच में ही उन्होंने लीगली सेपरेशन भी ले लिया. बताओ बताओ क्यों
3: क्यों?
1: और अभी तो ये आपस में डेट कर रहे थे 2 से 3 साल तक, उसके बाद शादी हुई थी इनकी. सो एक मेजर डिसएग्रीमेंट हो गया पोस्ट वेडिंग लिविंग अरेंजमेंट के लिए, जो इमीडिएटली जैसे शादी हुई ना तो ये डिस्कशन शुरू हो गया. भाई हुआ कुछ ऐसा कि हस्बैंड ने कहा कि उसकी जो नौकरी है मर्चेंट नेवी की, इट रिक्वायर्ड हिम टू वर्क ऑन शिप्स फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स, बिकॉज वो बता नहीं सकता था कि पोस्टिंग लोकेशंस कहाँ होने वाली है, ड्यूरेशन कितना टाइम दूर होने वाला है. तो भाई बीवी को लगा कि तो बता भी नहीं रहा मेरे को कि कितने टाइम तक दूर रहने वाला है, तो उसने बोला कि सॉरी. तो फिर जो एडवोकेट था हु वाज रिप्रेजेंटिंग द कपल, उसने बोला भैया एक बात सुनो, इतने सालों की कोर्टशिप थी तुम्हारी है, तुमने तब नहीं बात करी इस बारे में, ये क्या बात है. हाँ, एंड देयर इज नो एलिगेशन ऑफ अब्यूज क्रिमिनल बिहेवियर. तो दोनों ने कहा नहीं, ये हमने बात करनी हमारी रह गई, तो इसीलिए हम साथ में रहना ही चाहते. बीवी ने कहा मैं क्या करूंगी इसके, शादी करके तो यहाँ रहेगा ही नहीं. पति ने बोला मुझे तो काम पे जाना ही है. सो देन दे सेड विद इन 24 आवर्स सॉरी इट इज एनल्ड, तुम्हारी शादी हुई ही नहीं, म्यूचुअल कंसेंट से खत्म. बताओ.
3: मैं कह रही हूँ रुखसार, कुछ तो गड़बड़ है रुखसार,
1: कुछ तो
3: कह रही हूँ.
1: सही बात है, मैं भी शादी के टाइम से रियलाइज किया इसके साथ ना रह पाऊंगी.

0: और ये हमारा दूसरा घंटा जहां पर बहुत सारी खबरें लेकर आई है अंटा. ओ आई नेम्ड यू अंटा बाय द वे लास्ट वीक. ए अंटा अमलेपुरम.
1: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो.
0: घटिया गाना है ना वो. तो भाई अंटा क्या खबर लाई हो तुम बताओ.
2: अंटा नहीं था अंटे था अंटे.
0: वही वही अंटा अंटे सब बीच में एक बार पूछे ए अंटे मतलब सीरियसली सीरियसली what does it even mean?
2: Yes. It doesn't have to mean. It has to get your attention.
0: Right. जी.
2: चलो मैं आपको बता दूँ हाल ही में जो है गर्मी की वजह से टोक्यो में and it's very pretty recent. So टोक्यो में जो है भयानक गर्मी पड़ रही है. तो अब गवर्नमेंट ने सोचा कुछ तो मतलब रिलीफ देने के लिए कुछ ऐसी चीज है तो कूल बिज करके इन्होंने कैंपेन शुरू किया विच इज बेसिकली दे आर अलाउइंग द मेन टू डिच द ट्राउजर्स सो दे कैन वेयर लाइक